नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना जरूरी था। बयान में कहा गया है कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से रूस की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। वे व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर जयशंकर यात्रा के दौरान रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स JRSE लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। शिलान्यास समारोह के बाद JRSE भवन में लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती किरंगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नवी मुंबई के कपड़ा अपशिष्ट पुनर्चक्रण मॉडल का विस्तार महाराष्ट्र के अन्य नगर निगमों में भी करने का आह्वान किया है। इससे बढ़ते कपड़ा अपशिष्ट की समस्या से निपटने के साथ साथ नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। श्री सिंह ने CBDT बेलापुर स्थित कपड़ा पुनर्चक्रण सुविधा TRF का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रतिमाह लगभग 78 टन कपड़ा अपशिष्ट एकत्र किया जाता है, इसीलिए इस अपशिष्ट को स्थायी संसाधनों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय को नवी मुंबई नगर निगम के साथ हुए समझौते के समान अन्य नगर निगमों के साथ भी समझौते करने पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर के एक केंद्र पर अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा AIAPGET के संचालन में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटिव करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। NTA ने सूचित किया है कि नोटिस के समाधान तक मेसर्स एडुकेटिव का पैनल तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जयपुर के केंद्र पर बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण कल 49 उम्मीदवार परीक्षा पूरी नहीं कर सके। NTA ने सूचित किया कि प्रभावित छात्रों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को सुबह 10 बजे

0: राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन जयपुर में आयोजित की जाएगी। बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी BYC ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे साकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए हैं और 3 अन्य घायल हो गए। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उड़ान अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में आयोजित उदारा शक्ति 2026 अभियान शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पनामा ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष टीम हॉकी विश्व कप में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। वेगनर हॉकी स्टेडियम में भारत को अंतिम 4 में पहुंचने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना जरूरी था। अब भारत सोमवार को अर्जेंटीना के खिलाफ अपने दूसरा दौर का अंतिम और औपचारिक मुकाबला खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi yesterday. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's national vice presidents and general secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed national office bearers. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honor and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and unequivocally opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first 2 stanzas at Congress programs. The party also resolved to uphold the honour, dignity, legacy and national status of the complete Vande Mataram as the national song of India, as an immortal symbol of the country's national consciousness and freedom struggle. Defence Minister Rajnath Singh has asserted that non-violence and peace is India's culture and no one should make the mistake of considering this value of non-violence as its weakness. Mr. Singh said that safeguarding the country's security, sovereignty and honour is the foremost duty of the government. Mr. Singh was speaking at a function in New Delhi. Mr. Singh also said that Jain religion is the pride of India's civilization and culture, and the Narendra Modi government has given priority to the preservation and promotion of the Jain traditions and heritage. He said in the past few years, more than 20 revered Tirthankara idols that were stolen at some point in time have been brought back to India from foreign countries. Union Minister of Chemicals and Fertilizers Jagat Prakash Nadda reviewed the preparedness of the Department of Fertilizers for the ongoing Kharif and upcoming Rabi seasons. During the meeting held in New Delhi yesterday, Secretary and Senior Officers of the Department of Fertilizers were present. In a social media post, Mr. Nadda said that the fertilizer situation remains comfortable. He said ensuring a continued uninterrupted supply and timely availability of fertilizers to farmers remains the top priority of the government. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will undertake a 2-day official visit to Russia beginning today. The minister will co-chair the 27th

सुबह की शुरुआत आपके साथ सुन रहे हैं सुहानी सुबह हंड्रेड पॉइंट वन एफ एम गोल्ड पर।

सुबह की पहली किरण के साथ जब आसमान पर सुनहरा उजाला उतरता है तो लगता है जैसे दिन ने मुस्कुराकर दस्तक दी हो। हवा में घुली ताजगी, चिड़ियों की चहचहाहट और मन में नई उम्मीदों के साथ शुरू होती है एक और खूबसूरत सुबह। नमस्कार, 100.5 FM गोल्ड खरा सोना पर आप सुन रहे हैं सुहानी सुबह। मैं दीपचानी आप सभी सुनने वालों के साथ। आपके दिन की इस पहली सुरीली घड़ी में आपका साथी है सुहानी सुबह, जहां हर सुबह होती है कुछ मीठी बातें साथ खूबसूरत नगमे। कभी बीते पलों की यादें होंगी, कभी आज की जिंदगी से जुड़ी बातें और कभी आने वाले कल के लिए उम्मीद की नई रोशनी। तो चाय की प्याली हो या सुबह की सैर या घर के कामकाज की शुरुआत हो, बस जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती, सुबह एक नई शुरुआत का नाम है। तो आइए मुस्कुराइए, दिल के दरवाजे खोलिए और संगीत की मीठी फुहारों के साथ करते हैं इस दिन का आगाज़।

सुन रहे हैं आप सुहानी सुबह दीप जानी के साथ और ये है आपका अपना 100.5 FM गोल्ड खरा सोना। अब सुनिए महानगर कोलकाता और आसपास के इलाकों में मौसम का हाल। कोलकाता में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटों के दौरान सुबह 6:30 बजे तक कोलकाता में लगभग 4.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा और सापेक्षिक आर्द्रता 96% दर्ज की गई, यानी कि मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी 96% और मिनिमम 57%। और अब मछुआरों के लिए विशेष मौसम चेतावनी। पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाकों में आज यानी 23 अगस्त से 24 अगस्त कल के दौरान उत्तर बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल ओडिशा के तटों के आसपास तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है और कभी कभी झोंकों के साथ 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसलिए मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे 23 अगस्त से 24 अगस्त के दौरान उत्तर बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों की ओर समुद्र में न जाएं। तो ये था कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में मौसम का हाल। मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी FM

100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी सुबह, 7:27 और 40 सेकंड्स। मैं देवजानी आप सभी सुनने वालों के साथ। कहा जाता है कि आनुमानिक आज के ही दिन ईसा 79 में माउंट विसुवियस रोमन अग्नि देवता वल्कन के पर्व के दिन हलचल मचाना शुरू करता है और पोम्पेई शहर को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। 1839 में आज के ही दिन यानी 23 अगस्त को अंग्रेजों ने चीन से हांगकांग पर कब्जा कर लिया था। 1873 में लंदन में टेम्स नदी पर बने अल्बर्ट ब्रिज का उद्घाटन हुआ था आज के ही दिन। 1914 प्रथम विश्व युद्ध में जापान ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी आज के ही दिन। और आज के दिन 1924 में मंगल ग्रह 10वीं शताब्दी के बाद पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचा था। '33 में महात्मा गांधी को एक और भूख हड़ताल के बाद भारतीय जेल से रिहा कर दिया गया था आज के दिन। 1966 में लूनर ऑर्बिटर एक ने चंद्रमा

से पृथ्वी की पहली तस्वीर ली थी। 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी ने पुनर्मिलन की घोषणा की थी, जो पुनर्मिलन 3 अक्टूबर को हुआ था। 2007 में हैशटैग का आविष्कार हुआ था और इसका पहली बार उपयोग अमेरिकी उत्पाद डिजाइनर क्रिस मेसिना के एक ट्वीट में किया गया। 2017 में दुनिया के सबसे शुष्क स्थान चिली के एटाकामा रेगिस्तान में अप्रत्याशित बारिश के बाद फूल खिल उठे थे। 2021 में सेशल्स के विशाल कछुए द्वारा पक्षी का शिकार करने और उसे खाने का वीडियो पहली बार सामने आया। इससे पहले कछुओं को शाकाहारी माना जाता था। 2023 भारत का चंद्रयान 3 चंद्र मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला मिशन है और भारत चंद्रमा पर उतरने वाला 4th देश बन गया। इसी के साथ अगस्त, क्या आप मना रहे हैं अपना जन्मदिन? हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आज के ही दिन अपना जन्मदिन मनाती है अभिनेत्री अदाकारा सायरा बानो, जिनका जन्म हुआ था 1944 में। में भारत के कोलकाता में जन्म हुआ था भारतीय तालवादक, तबला वादक और संगीतकार तन्मय बोस का, जिन्होंने ताल तंत्र एक्सपीरियंस की रचना की। और आज के ही दिन 1968 में पैदा हुए थे गायक के।

100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी सुबह देव जानी के साथ। चलिए अब नजरें दौड़ाते हैं अखबारों की ओर। अखबार क्या कह रहे हैं आज के दिन के बारे में, हमारे आसपास के बारे में, हमारे देश और दुनिया के बारे में। 7,000 करोड़ रुपए से तैयार होंगी 1,800 किलोमीटर लंबी LPG पाइपलाइनें। इससे देश के कॉमन कैरियर LPG पाइपलाइन नेटवर्क में लगभग 1/4 का विस्तार होगा। इस पहल का मकसद ईंधन आपूर्ति को अधिक लचीला बनाना और सड़क परिवहन पर निर्भरता कम करना है। चीनी उत्पादन में गिरावट से बेखबर खाद्य मंत्रालय, शुल्क मुक्त आयात के फैसले के बाद भी कीमतें बेकाबू। गन्ना अनुसंधान की कमजोरियों को जल्द दूर नहीं किया गया और उत्पादन के वास्तविक आंकड़ों की समय पर निगरानी के लिए सरकार की ओर से भरोसेमंद तंत्र नहीं बनाया गया तो ये संकट केवल इसी साल तक सीमित नहीं रहने वाला, ऐसी खबर आई है। वाराणसी, चेतावनी स्तर के फिर करीब पहुंची गंगा, सतर्कता बढ़ी। यूपी के काशी में गंगा और वरुणा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से संभावित बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। शनिवार शाम 4 बजे गंगा का जलस्तर 68.3

कोलकाता के 25 होटल रेस्टोरेंट को कारण बताओ यानी कि शो कॉज नोटिस जारी। आग लगने से 9 लोगों की मौत के मामले में होटल मालिक गिरफ्तार। बच्चों के लिए FDC दवाओं पर प्रतिबंध। मंत्रालय ने सभी निर्माताओं को निर्देश दिया कि वे इन दवाओं से संबंधित लेबल, पैकेज इंसर्ट और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से ये चेतावनी प्रदर्शित करें। 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाली क्लोरोफेनिरामाइन मेलिएट और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड युक्त सभी निश्चित खुराक संयोजन यानी FDC के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन दवाओं का प्रयोग सामान्य सर्दी, जुकाम, बहती नाक, छींकने और नाक बंद होने सहित अन्य इलाज में किया जाता है। भारत मॉरिशस ने ईंधन आपूर्ति समझौते पर किए हस्ताक्षर। भारत और मॉरिशस ने ऊर्जा क्षेत्र में अपनी साझेदारी को मजबूत करते हुए 5 साल के एक दीर्घकालिक ईंधन आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मॉरिशस को पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की आयात जरूरत को पूरा करेगा। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की प्रमुख ऊर्जा सुरक्षा साझेदार के रूप में भूमिका और मजबूत होगी। उधर चीन चंद्रमा पर बर्फ की खोज के लिए शुरू करेगा अभियान। चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम जल्द ही हाल के वर्षों के सबसे अभिनव चंद्र अन्वेषण अभियानों में से एक शुरू करने जा रहा है। इन मिशन का उद्देश्य उन स्थानों का अध्ययन करना है जहां सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और जहां चंद्रमा पर मौजूद जल बर्फ के बारे में अब भी कोई अहम सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। बोर्डिंग पास पर मुहर की प्रक्रिया 1 सितंबर से खत्म। अधिकारियों ने बताया कि इसके बजाय विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों को आव्रजन जांच के लिए अपने स्मार्टफोन पर ई बोर्डिंग पास दिखाना होगा। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले आव्रजन ब्यूरो BOI ने हाल में ही हवाई अड्डा अधिकारियों को इस संबंध में आधिकारिक निर्देश भेजा है।

आइए अब खेल की समाचारों की ओर नजर दौड़ाते हैं। नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे पथिरागी ने खिताब जीता। नीरज केवल 9 सेंटीमीटर के अंतर से स्वर्ण पदक से चूके। जी हां, लुसाने डायमंड लीग में भाला फेंक मुकाबले की ये बात है। अमेरिकी खिलाड़ी गाफ टियाफो नाकाशिमा और पेगुला सेमीफाइनल में। सिनसिनाटी ओपन की बात चल रही है। अमेरिका के खिलाड़ियों ने सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना दबदबा बरकरार रखा है और उसके 4 खिलाड़ी पुरुष और महिला वर्ग के एकल के सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रहे हैं। उधर बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा गायत्री ने अपना पहला कांस्य पदक जीता। भारत ने महिला युगल में आखिरी बार विश्व चैंपियनशिप का पदक 2011 में जीता था। तब ज्वाला गट्टा और अश्विनी पुनप्पा ने लंदन में कांस्य पदक हासिल किया था। चीनी जोड़ी के खिलाफ पिछले 7 मुकाबलों में त्रिशा और गायत्री को 6 बार हार मिली थी। ईस्ट बंगाल के कोच हबस की निगाहें 17वें खिताब पर। इस बंगाल की भिड़ंत आज होने वाले डोरन कप फाइनल में जब अपने चिर प्रतिद्वंदी मोहन बगान सुपर जायंट से होगी तो भावनाएं चरम पर होगी और इतिहास भी दांव पर लगा होगा। ईस्ट बंगाल के कोच एंटोनियो लोपेस हबास रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले 17वें डोरन कप खिताब पर निगाहें लगाए हुए हैं। हॉकी विश्व कप में सेमीफाइनल में बने रहने के लिए भारत को जीतना होगा मुकाबला। नए प्रारूप के तहत भारत को ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन से नहीं खेलना है क्योंकि पहले दौर में दोनों के बीच मुकाबला हो चुका है और उसके ड्रॉ रहने से भारत के पास 1 अंक है। नीदरलैंड भी पूल ए में ऑस्ट्रेलिया को हराने से 3 अंक लेकर दूसरे दौर में पहुंचा है, यानी उसके पास अब 2 मैचों में 6 अंक है। टी20 क्रिकेट

क्रिकेट में धूम मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी को आज रविवार से सेंटर ऑफ एक्सलेंस में शुरू होने वाले दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में पूर्वी क्षेत्र की तरफ से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के खिलाफ प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने रिकॉर्ड को सुधारने का मौका मिलेगा। इस 15 वर्षीय खिलाड़ी ने बिहार के लिए 8 प्रथम श्रेणी मैचों की 12 पारियों में 17 से अधिक के औसत से रन बनाए हैं, जो कि आकर्षक नहीं है। उनका सर्वोच्च स्कोर 93 रन है। इस तरह से देखा जाए तो सूर्यवंशी लाल गेंद के क्रिकेट में अभी भी एक अनुभवहीन खिलाड़ी हैं, लेकिन दलीप ट्रॉफी में सबसे कमजोर माने जाने वाली उत्तर पूर्व की टीम के खिलाफ उन्हें प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कुछ रन बनाने और आत्मविश्वास हासिल करने का मौका मिलेगा। मिशेल स्टार्क ने मैच की पहली ही गेंद पर बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज शादमान इस्लाम को आउट किया और फिर 6 विकेट लिए, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन शनिवार को विकेटों के पतझड़ के बीच अपना पलड़ा भारी रखा। बाद में शरीफुल इस्लाम ने भी अपना जलवा दिखाया और 6 विकेट लेकर स्टार्क की बराबरी की। पहले दिन कुल 18 विकेट गिरे।

7:55 और 25 सेकंड्स देखते ही देखते कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। इस अगले और आखिरी गीत के साथ ही साथ मैं देवजानी लूंगी आप सभी से और सुहानी सुबह कार्यक्रम से इजाजत। FM गोल्ड पर मेरा सफर यही खत्म नहीं होगा, दोबारा मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगी 11:10 पर लेकर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। और उससे भी पहले अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप ट्यून कर सकते हैं 10:02 पर 107 FM रेनबो, जहां पर मैं रहूंगी लेकर कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप। फिलहाल इस गीत के साथ ही साथ दीजिए देवजानी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तन्वी और कोमल को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है।
1: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद डीटीएच, एचआईएसटी और आईपीटीवी सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान सुपर

0: इंडीज के बीच डूरंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
1: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में AI को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि AI दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। BYC ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खड़कुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
2: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की पहली तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश, मखदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहीं। नाइजीरिया के चुकवू एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2-3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जेंजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं, भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वंदे मातरम के दो ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर उसके पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, चिकन नेक को मिलेगी अवैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है, बोले चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत US संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान की घेरेबंदी के बीच अमरीका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब US और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व सैनिकों के संगठनों में भी बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा बलों पर हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1 सितंबर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैंपिंग व्यवस्था खत्म होगी। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, चैटबॉट नहीं, बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की LLB, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: বেলা থেকে আপনারা লিখতে থাকুন নানা কথা, আপনাদের যেমনটা মনে হয় সেরকম গানের অনুরোধ অবশ্যই রাখতে পারেন। আমরা আর কিছুক্ষণের মধ্যে রেডিও সেট ছেড়ে যাব, কারণ রেডিও সেটে যারা শুনছেন এফএম গোল্ড তাদের জন্য সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মুকেশ কুমার। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ संपर्क बढ़ाना है। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरेंट कप फाइनल भी देखेंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधि मंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। बैठक में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित विद्यार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा 1 सितंबर को सवेरे 10 बजे जयपुर में ही आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बीच ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं पूरी तरह ठप हैं। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे।
3: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 और पदक जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश मकदुम तथा कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का 2रा और अंतिम मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। भारत पहला टेस्ट जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज

0: योग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी भाग लेंगे। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगण में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर ज्वाइंट के बीच टूरन कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बीच ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में सख्त नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 440 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को सुबह 10 बजे जयपुर में ही आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर आज देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। उन्होंने कहा कि भारत ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है और इस लक्ष्य को साकार करने में अंतरिक्ष क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 और पदक जीते। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश मगदुम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारत का पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिन भर तेज वर्षा का अनुमान है। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई वैश्विक

0: व्यवस्था में भारत अंतरिक्ष कार्यक्रमों का लगातार विस्तार कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 2 दिन की रूस यात्रा पर आज रवाना होंगे। कनाडा अमेरिका के साथ वार्ता विफल होने के बाद जवाबी शुल्क लगाएगा। बंगाल की खाड़ी में चालक दल के 24 सदस्यों के साथ मालवाहक जहाज डूबा। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच कोलंबो में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में वीडियो साझा करते हुए उन्होंने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष कार्यक्रमों का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज नई पीढ़ी के इंजीनियर, डिजाइनर, कोडर और वैज्ञानिक नई प्रौद्योगिकियां विकसित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। उन्होंने कहा कि भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है और इस लक्ष्य को साकार करने में अंतरिक्ष कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। यात्रा के दौरान डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैफरोव के साथ मुलाकात भी करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए वार्ता करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगे। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि बैठक के दौरान अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। यह जनकेंद्रित और मानवता के दृष्टिकोण को अपनाता है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने कहा है कि व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा अपने श्रमिकों, किसानों, परिवारों और व्यवसायों की रक्षा के लिए अमरीका के नए शुल्क के बराबर ही जवाबी शुल्क लगाएगा। एक रिपोर्ट।
1: श्री कार्नी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक साल से अधिक समय से कनाडा ने अमेरिका के साथ नए व्यापक व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए गहन और सद्भावनापूर्ण प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिका के साथ एक साल से अधिक की बातचीत के बाद कनाडा के वार्ताकारों को वापस लौटने के निर्देश दिए हैं। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि कनाडा आने वाले दिनों में अपने जवाबी शुल्क कदमों के बारे में विस्तार से घोषणा करेगा, जो मजदूर दिवस के बाद मंगलवार से लागू होंगे। शुक्रवार देर रात अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता विफल होने के बाद श्री कार्नी का यह बयान आया। अमेरिका ने लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य के कनाडाई आयात पर 50% शुल्क लगा दिया है। श्री कार्नी ने अमेरिका की मांगों को अनुचित और आर्थिक रूप से नुकसानदेह बताया। उन्होंने कहा कि कनाडा और सरकार श्रमिकों और व्यवसायों को समर्थन देने के लिए अतिरिक्त उपाय करेगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
2: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमा के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: उधर दक्षिण ट्रिडिशा में भी एक नाव के पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य लापता हैं। एक व्यक्ति को बचा लिया गया। जर्जिस और बेन गुएडो शहरों के बीच जब नाव रवाना हुई थी तब उसमें लगभग 15 लोग सवार थे। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में

0: दो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उड़ान अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दो देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच आज कोलंबो में जारी है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत के केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर हैं। इससे जुड़ी और जानकारी के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: भारत पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम इंडिया दूसरे टेस्ट में जीत हासिल कर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाना चाहेगी, जबकि श्रीलंका श्रृंखला बराबर करने का प्रयास करेगी। उधर स्लोवाकिया में आयोजित अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 और पदक जीते हैं। मानसी लाठर ने रजत और तन्वी गुंदेश मखदूम तथा कोमल ने कांस्य पदक अपने नाम किए। मानसी को 68 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में चीन के चेनलिंग सोंग से कड़े मुकाबले में हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। तन्वी ने 57 किलो वर्ग में कनाडा की एग्निया क्राकोविस्का को हराया, जबकि कोमल ने 59 किलो वर्ग में हंगरी की एडा बालाज को हराकर कांस्य पदक जीता। इससे पहले शुक्रवार को काजल धोचक ने महिलाओं के 76 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक, जबकि तनु शर्मा और सविता ने अपने अपने भार वर्गों में रजत पदक हासिल किए। 18 वर्षीय काजल ने 76 किलो वर्ग के फाइनल में चीन की जिंगुरू सन को हराकर खिताब जीता। 72 किलो वर्ग के फाइनल में तनु ने जापान की चिसातो योशिदा को कड़ी टक्कर दी, लेकिन 3-5 से हारकर उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। प्रतियोगिता के अंतिम चरण में प्रवेश करने के साथ ही भारतीय दल अब पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धाओं के शेष 57 किलो, 65 किलो, 79 किलो और 92 किलो वर्गों में प्रतिस्पर्धा करेगा। और भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी भी दे दी है। इसमें 265 पुरुष और 227 महिला एथलीट शामिल है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। समाचार कक्ष से मैं प्रशांत कुमार।
0: ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकेबंदी और कर्फ्यू से संचार सेवाएं ठप हैं। उधर बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष कार्यक्रमों का विस्तार कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 2 दिन की रूस यात्रा पर आज रवाना होंगे। कनाडा ने अमेरिका के साथ वार्ता विफल होने के बाद जवाबी शुल्क लगाए। बंगाल की खाड़ी में चालक दल के 24 सदस्यों के साथ मालवाहक जहाज डूबा। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच कोलंबो में जारी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। अंतरिक्ष क्षेत्र के

स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उन्होंने निरंतर प्रयासरत रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। श्री मोदी ने कहा कि लागत के मामले में भारत की स्थिति काफी बेहतर है और देश

0: आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगतिशील सोच से प्रेरित भारतीय वैज्ञानिकों की ये उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगे। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि साइकिल का उपयोग पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारतीय क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 1 विकेट पर 38 रन बना लिए हैं। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। FIH हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को पूल ई का ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बीते हुए पल लेके आए हैं यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। FM

किसी फिल्मी जोड़ी को याद करने के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है कि उन्होंने बहुत सारी फिल्में साथ की हो, या फिर जरूरी है कि पर्दे पर जब दोनों एक साथ आए तो कहानी के किरदारों से आगे निकलकर उनकी आंखें कुछ कहने लगें। कुछ जोड़ियां ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि वे सिर्फ दो कलाकार नहीं, दो भावनाएं हैं जो एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। हिंदी सिनेमा में एक ऐसी ही जोड़ी थी राज बब्बर और स्मिता पाटिल की। एक तरफ राज बब्बर, गंभीर व्यक्तित्व, सशक्त संवाद अदायगी और सहज अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता, और दूसरी तरफ स्मिता पाटिल, वो अभिनेत्री जिनकी आंखें जैसे अभिनय से पहले ही कहानी कह देती थी। दोनों ने साथ में कुछ एक फिल्मों में काम किया और उनकी पहली इम्पॉर्टेंट फिल्म थी भीगी पलके, जो 1982 में रिलीज हुई थी, जिस फिल्म से इस गीत को हमने अभी अभी सुना। और शायद यही वजह है कि आज इतने सालों बाद भी जब इन दोनों का नाम साथ लिया जाता है तो मन में एक गीत सा बज उठता है, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। लो आ गई उनकी याद में, आज हम याद करेंगे राज बब्बर और स्मिता पाटिल की उस ऑन स्क्रीन जोड़ी को, उनकी फिल्मों को, उनके किरदारों को और उन पलों को जिनमें सिनेमा ने उनकी साझा मौजूदगी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। नमस्कार, सुन रहे हैं आप 100.1 FM गोल्ड खारा सोना पर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद, दीप चानी के साथ 11:16 और 18 सेकंड्स।

स्मिता पाटिल की खासियत थी कि वो किसी भी किरदार को केवल निभाती नहीं थी, उसके भीतर उतर जाती थी। 1970 के दशक में समानांतर सिनेमा यानी पैरेलल सिनेमा या आर्ट सिनेमा से अपनी पहचान बनाने वाली स्मिता ने मंथन, भूमिका, निशांत, आक्रोश, चक्र, अर्थ, बाजार, अर्ध सत्य जैसी फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया। लेकिन वो केवल गंभीर सिनेमा की अभिनेत्री नहीं थी, उन्होंने नमक हलाल जैसी व्यावसायिक फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बनाई। दूसरी ओर राज बब्बर भी उस दौर के उन अभिनेताओं में से थे जो समान सहजता से संवेदनशील और व्यावसायिक दोनों तरह के किरदार निभा सकते थे। इसलिए जब दोनों साथ आए तो पर्दे पर एक अलग ही संतुलन दिखाई दिया।

1984 में आई आज की आवाज। इस फिल्म में राज बब्बर और स्मिता पाटिल फिर साथ आए। ये फिल्म भीगी पलके की कोमल भावनात्मक दुनिया से बिल्कुल अलग थी। यहाँ कहानी में सामाजिक आक्रोश था, अन्याय था और व्यवस्था के खिलाफ उठती आवाज थी। राज बब्बर ने प्रोफेसर की भूमिका निभाई और स्मिता पाटिल ने उनकी पत्नी रजनी का किरदार निभाया। फिल्म का विषय बेहद गंभीर था और राज बब्बर तथा स्मिता पाटिल ने अपने रिश्ते के घरेलू और भावनात्मक पक्ष को भी बहुत ही प्रभावशाली ढंग से निभाया। फिल्म 1984 में रिलीज हुई और इसे दर्शकों को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और इस फिल्म का शीर्षक गीत आज की आवाज अपने समय की बेचैनी को जैसे आवाज देता था। राज बब्बर और स्मिता पाटिल की जोड़ी को केवल रोमांटिक जोड़ी कहना उनके अभिनय के साथ न्याय नहीं होगा। कभी वे पति पत्नी बने, कभी ऐसे किरदार जिनके बीच संघर्ष था, कभी जीवन की कठिन परिस्थितियों में साथ खड़े इंसान और कभी ऐसी कहानी का हिस्सा जिसमें प्रेम से कहीं ज्यादा सामाजिक सवाल थे, यही उनकी जोड़ी की सबसे खूबसूरती थी। और मजेदार बात यह भी है कि कुछ एक ऐसी फिल्में भी बनी जहां राज बब्बर और स्मिता पाटिल दोनों ने अभिनय किया पर एक दूसरे के

अब एक महत्वपूर्ण मौसम चेतावनी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे के गरज चमक वाले तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इनमें पुरुलिया, अलीपुरद्वार, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी और मालदा जिले शामिल है। ये चेतावनी आज 23 अगस्त सुबह 10:55 से अगले 2-3 घंटों के लिए जारी की गई है। ऐसे मौसम में लोगों को सावधानी बरतने और स्थानीय मौसम संबंधी सूचनाओं पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। घोषणा समाप्त हुई।

बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

राज बब्बर और स्मिता पाटिल की साझा फिल्मोग्राफी पर नजर डाले तो उनकी जोड़ी कई अलग अलग रंगों में दिखाई देती है। तजुर्बा से लेकर आज की आवाज, हम दो हमारे दो, पेट प्यार और पाप और अंगारे तक, दोनों ने अलग अलग तरह के किरदार निभाए। 1986 की अंगारे में दोनों मुख्य भूमिकाओं में थे। राज बब्बर ने इंस्पेक्टर विजय और स्मिता पाटिल ने आरती का किरदार निभाया। ये फिल्म रोमांटिक ड्रामा से कहीं अधिक एक गंभीर सामाजिक और न्यायिक कथा थी। यहां भी दोनों की जोड़ी का आकर्षण केवल प्रेम दृश्यों में नहीं था। स्मिता के चेहरे पर पीड़ा, राज बब्बर के किरदार में जिम्मेदारी और दोनों के बीच भावनात्मक रिश्ता, यही फिल्म को आगे बढ़ाता है। स्मिता पाटिल को याद करते हुए उनके अभिनय की सबसे बड़ी विशेषता शायद यही कही जा सकती है, वो संवादों के बीच की खामोशी भी अभिनय कर लेती थी। उनके चेहरे पर मुस्कान हो तो उसके पीछे की कहानी दिखाई देती थी। उनकी आंखों में आंसू हो तो दर्शक उस दर्द को महसूस करता था, और वो जब चुप रहती थी तब भी पर्दा चुप नहीं रहता था। यही वजह है कि राज बब्बर जैसे संवादों के मजबूत अभिनेता के साथ उनकी जोड़ी एक दिलचस्प विरोधाभास पैदा करती थी, यानी एक मैजिकल कॉन्ट्रास्ट। राज शब्दों से बहुत कुछ कहते थे, स्मिता अक्सर खामोशी से, और दोनों जब एक फ्रेम में आते थे तो ये अंतर ही उनकी केमिस्ट्री बन जाता था। महेश भट्ट की 1987 की इस फिल्म में राज बब्बर और स्मिता पाटिल दोनों थे। फिल्म में कुमार गौरव, राज किरण और अनामिका पाल भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। दिलचस्प बात यह है कि आज में दोनों का रिश्ता वैसा पारंपरिक नायक नायिका वाला नहीं था जैसा दर्शक उनकी पिछली फिल्मों में देख चुके थे। राज बब्बर ने एक संपादक की भूमिका निभाई और स्मिता पाटिल ने कविता का किरदार निभाया। फिल्म की कहानी अलग थी, लेकिन इन दोनों की मौजूदगी एक बार फिर दर्शकों को आकर्षित करती रही। और आज की एक और खासियत थी उसका संगीत। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के संगीत ने फिल्म की भावनात्मक दुनिया को एक अलग स्वर दिया। कुछ गीत किसी फिल्म के नहीं लगते, वे हमारी अपनी यादों के लगते हैं। और शायद स्मिता पाटिल को याद करते हुए ये गीत इसलिए भी मन को छूता है क्योंकि उनका जो फिल्मी सफर था वो बहुत छोटा सा था, लेकिन उनकी याद बेहद लंबी।

राज बब्बर और स्मिता पाटिल की निजी जिंदगी का जिक्र किए बिना ये कहानी पूरी नहीं होगी। दोनों की पहली मुलाकात भीगी पलके के सेट पर हुई थी। बाद में उनकी दोस्ती और निकटता प्रेम में बदल गई। उस समय राज बब्बर पहले से विवाहित थे, इसलिए इस रिश्ते

ने निजी जीवन के साथ साथ फिल्मी दुनिया में भी बहुत चर्चा और विवाद पैदा किया। लेकिन रेडियो पर आज हम उनके निजी जीवन का फैसला सुनाने नहीं बैठे हैं। हम यहाँ ये देखने आए हैं कि दो कलाकारों के बीच की व्यक्तिगत भावनाओं में उनके अभिनय को किस तरह प्रभावित किया। ये शायद दर्शकों को ऐसा महसूस हुआ कि प्रभावित किया, क्योंकि सिनेमा की खूबसूरती यही है, पर्दे पर जो प्रेम हम देखते हैं वो कभी कभी किरदारों का होता है, कभी कलाकारों का भी, और कभी सिर्फ हमारा अपना। कहते हैं कि अच्छी फिल्में पुरानी नहीं होती, वे हर बार नए दर्शक के साथ फिर से जन्म लेती हैं, और अच्छे कलाकार वे कभी मरते नहीं हैं। वे किसी पुराने गीत में मिल जाते हैं, किसी फिल्म के दृश्य में, किसी संवाद में, या अचानक किसी तस्वीर को देखकर मन कह उठता है, लो आ गई उनकी याद। राज बब्बर और स्मिता पाटिल की ऑन स्क्रीन जोड़ी भी ऐसी ही याद है, एक ऐसी याद जिसमें प्रेम है, संघर्ष है, अभिनय है, सिनेमा है, और सबसे बढ़कर एक अधूरी सी कहानी है। फिलहाल ये सफर यहीं तक। सुन रहे थे आप लो आ गई उनकी याद देवजानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: बहुत लोगों को हमें जुड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ।

0: पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी

0: उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में यह क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, फिर चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर यह दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया गया है। दक्षिणी ट्यूनीशिया में प्रवासियों को ले जा रही एक नौका पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य लापता हैं। एक व्यक्ति को बचा लिया गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 88 रन बना लिए हैं। मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें। तो ये जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बाहर लोगों को हमें जोड़ना है। हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector. Mr. Modi said that India is highly competitive in terms of cost and have quality talent with a strong risk-taking capacity. The Prime Minister said this combination gives the country the potential to establish itself rapidly as a leading player in the global space sector. On National Space Day, Union Minister of State for Science and Technology, Dr. Jitendra Singh has recalled

0: এর বন্ধই থাকবে হরমুজ প্রণালী, স্পষ্ট বার্তা ইরানের। সল্টলেকের যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আজ ডুরান্ড কাপ ফুটবল ফাইনালে মুখোমুখি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ওয়েস্ট বেঙ্গল। খবর শেষ হলো, পরের খবর একটা বেজে 30 মিনিটে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে বিশাল শর্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में श्री मोदी ने निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
2: बहुत लोगों को हमें जुड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को

0: स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठक भी होगी। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। इस बीच ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता हॉर्मुज बंद रहेगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने हॉर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूरी पर यह दुर्घटना हुई। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 105 रन बना लिए हैं। FIH हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को पूल ई का ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. India is celebrating National Space Day today. The country observes the day to commemorate the historic soft landing of Chandrayaan 3 on the lunar South Pole in 2023, making India the first country to achieve the feat. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings on the occasion. Prime Minister Narendra Modi, while sharing a video on social media, said, "In the new global order, India is continuously expanding its space sector." Mr. Modi said that India's space sector is a magnet for global investors. He said that India has resolved to become a developed nation by 2047 and the space sector will play a pivotal role in realizing this vision. The Prime Minister also noted that India's private space talent is creating its own unique identity across the world. Prime Minister Modi today said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
2: दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बाहर लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: On the occasion, Union Minister of State for Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, has recalled the historic success of Chandrayaan 3. In a social media post, Dr. Singh remembered the moment on the 23rd of August 2023, when Chandrayaan 3 successfully landed on the moon's south polar region. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर

0: has been ruled out after suffering a concussion, while Nishan Madhushka has been dropped. Kamil Mishra is making his debut, while Pasindu Suryabandara also returns to the playing 11. In the FIH Hockey World Cup, the Indian women's team will take on Australia tonight. India must win this match to stay in contention for a semi-final berth. The Pool E match will begin at 10:30 p.m. India's qualification will also depend on the result of the earlier match between China and the Netherlands. India need China to lose that match. If China win, India will be eliminated even with a win over Australia. Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal today highlighted the need to reduce manual intervention in sanitation work through mechanization. Speaking at the Foundation Day celebrations of the National Commission for Safai Karmcharis in New Delhi, Mr. Meghwal stressed the importance of safety measures, protective equipment, training, health insurance and proper monitoring. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges space startups to build robust ecosystem and attract global talent, extends greetings on National Space Day. BRICS Sports Ministers meeting underway in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to embark on a two-day visit to Russia today. Orange alert for heavy to very heavy rainfall issued for isolated places over Chhattisgarh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. Iran warns neighbours against joining US economic campaign against Tehran. In cricket, second and final test match of the series between India and host Sri Lanka underway in Colombo. And in the FIH Hockey World Cup, Indian women to take on Australia in a must-win match for a semi-final berth tonight. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दो दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।

0: चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में 3rd राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक वीएन राव भी उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: देश आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। हर वर्ष 23 अगस्त को यह दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और साथ ही विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में अपनी जगह बनाई। संचार और मौसम पूर्वानुमान से लेकर नेविगेशन और आपदा प्रबंधन तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लोगों के दैनिक जीवन में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक इस समय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में चल रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच खेलों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 27 अगस्त तक जापान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका का दौरा करेंगे। उनके साथ भारत का एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी जापान जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान के विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी संबंधों की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य बीमा जरूरी हैं। नौसेना का प्रशिक्षण जहाज सुदर्शनी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवार चालक

0: के सदस्य और प्रशिक्षु पुर्तगाल की नौसेना और भारतीय समुदाय के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। ये आईएनएस सुदर्शनी का 15वां पुर्तगाल दौरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसे ही मौसम की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार बारिश से प्रमुख नदियां उफान पर हैं।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के नये क्षेत्र के कारण उड़ीसा के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने आज केंदुझर, मयूरभंज, रायगढ़, कोरापुट और कलाहांडी में बारिश से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। कलाहांडी के थुआमूल रामपुर में पिछले 24 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। लगातार बारिश के बीच बंसाधारा और सालंदी जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाके अभी भी जोखिम की स्थिति में है। 7 जिलों में हालिया बाढ़ से लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और राहत व बहाली का काम जारी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्धपोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। श्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि GRSE ने हाल के समय में 100 से अधिक पोत उपलब्ध कराए हैं। GRSE की परियोजनाएं शिपयार्ड की विनिर्माण क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं से समुद्री बलों और अन्य रक्षा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड के मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 2 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे स्वदेशी धातुकर्म और रक्षा विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। चौथे चरण की औद्योगिक क्रांति और ऊर्जा कुशल तकनीकों से लैस ये दोनों केंद्र उच्च स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देंगे। आयात पर निर्भरता कम होगी और रक्षा, रेलवे तथा रणनीतिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमरीका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता, होर्मुज बंद रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने होर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए श्री ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य और अमरीका के बीच की दूरी 7,000 मील से भी अधिक है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहा है। ईरान ने कहा है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों तथा खासकर चीन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को स्थगित किए जाने और कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त करने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद और गहरा गया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा पर आरोप लगाया कि वो अमेरिकी किसानों पर काफी अधिक शुल्क लगा रहा है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की मांग को अनुचित और व्यापार समझौते की अनदेखी करने वाली है। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अपने कामगारों, किसानों, परिवारों और कारोबार की रक्षा के लिए अमेरिका जितना ही शुल्क लगाएगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा स्वतंत्र रूप से व्यापार समझौता वार्ता करेगा और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से पानी की पाइप फट गई और कुछ इलाकों

0: में यातायात सेवा पर भी असर पड़ा। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। और अब कुछ खेल खबरें। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। इस मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। भारत ने पहला मुकाबला 165 रन से जीता था। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन।
1: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी और 51 रन से हरा दिया है। दोनों टीम श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर रही। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर और भारत चौथे स्थान पर है। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक प्रतिबंध अभियान में शामिल न हो। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक इस समय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में चल रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच खेल के जरिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे।

0: सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य बीमा जरूरी हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदान और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमेरिका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमेरिकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमेरिका अपना रुख नहीं बदलता, होर्मुज बंद रहेगा। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। चायकाल तक भारत ने 3 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। FIH हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को पूल ई का ये मैच जीतना हर हाल में जरूरी है। इसके साथ ही ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector.
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: Mr. Modi said that India is highly competitive in terms of cost and have quality talent with a strong risk-taking capacity. The Prime Minister said that this combination gives the country the potential to establish itself rapidly as a leading player in the global space sector.
2: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
1: Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings on the occasion of National Space Day. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said that India's remarkable achievements in space exploration stand as a testament to country's scientific excellence, spirit of innovation and determination to push the frontiers of knowledge. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi, while sharing a video on social media, said that in the new global order, India is continuously expanding its space sector. Mr. Modi said that today, Gen Z engineers, designers, coders and scientists are creating new technologies.
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: The BJP today demanded the Congress party to support the Women's Reservation Bill in the Parliament instead of playing politics around it. Talking to reporters in New Delhi, BJP National General Secretary Smriti Irani said the Congress party only claims that they support women. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

0: प्यार में जवाब अपने आप हो जाता है। कहना अनुराधा,
1: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं बिंदु बिंदु,
2: अरे तेरी की भूला।
0: कहना कहना
3: क्या

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्ध पोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में रखरखाव सेवा को बेहतर करना जरूरी है। आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में उन्होंने ये बात कही। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य बीमा जरूरी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि साइकिल का उपयोग पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संडे ऑन साइकिल पहल का उद्देश्य लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित करना और स्वस्थ जीवन शैली की संस्कृति को बढ़ावा देना है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमेरिका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को एक

0: के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने दोहराया है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता, हॉर्मूज बंद रहेगा। कोलंबो में भारत ने श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 234 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has said that space sector startups have shown their trust in the government. Mr. Modi stated this during an interaction with the startup CEOs of the space sector. The Prime Minister urged them to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: During the interaction, Chief Executive Officer of India's first space tech unicorn, Skyroot Aerospace, Pawan Kumar Chandana thanked Mr. Modi for opening up the space sector. Meanwhile, National Space Day is being observed today. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Modi extended their greetings on the occasion. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said, India's remarkable achievements in space exploration stand as a testament to countries' scientific excellence, spirit of innovation and determination to push the frontiers of knowledge. Meanwhile, Prime Minister Modi, while sharing a video on social media, said that in the new global order, India is continuously expanding its space sector.
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: The country observes the day every year to commemorate the historic soft landing of Chandrayaan 3's Vikram lander on the moon on this day in 2023, making India the fourth country to achieve a soft landing and the first to land near the lunar south polar region. Defence Minister Rajnath Singh has stressed the need for self-reliance in shipbuilding, ship repair and related maritime sectors, describing it as vital to the country's security. He asserted that India is capable of becoming a global shipbuilding hub and called for high-quality maintenance services and timely delivery of defence products to achieve this goal. The Defence Minister was addressing the gathering after laying the foundation stone for 5 expansion projects of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers and Yantra India Limited in Kolkata. BJP today demanded the Congress party to support the women's reservation bill in the parliament instead of playing politics around it. Talking to reporters in New Delhi, BJP National General Secretary Smriti Irani said the Congress party only claims that they support women. Ms. Irani appealed to all political parties to work together so that women get more seats in the Lok Sabha and state assemblies. The BRICS Sports Ministers meeting under India's chairship is being held at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh. Union Minister for Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandaviya and Minister of State for Youth Affairs and Sports Raksha Nikhil Khadse, along with sports ministers and heads of delegation from all 11 BRICS member countries, are taking part in the discussion. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar is undertaking a 2-day official visit to Russia beginning today. During the visit, the minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade and Economic Scientific Technology.

0: till I walk in.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चंदाना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को $45 अरब की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध पोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में रखरखाव सेवा को बेहतर करना जरूरी है। आज कलकत्ता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में रक्षा मंत्री ने ये बात कही। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वे महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़ें और संसद में इसका समर्थन करें। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने में सहयोग करके इसे साबित करना चाहिए। श्रीमती ईरानी ने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र से हटा दिया है। अधिकरण मानना है कि यह बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 291 रन बना लिए थे। देवदत्त पडिक्कल ने 117, शुभमन गिल ने

50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को यह मैच जीतना होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। मौसम विभाग ने

100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना के अंतर्गत कार्यक्रम है चाय और क्लासिक्स। इतिहास हमारा गौरव है, भविष्य हमारी उड़ान है, परंपरा हमारी जड़ और विज्ञान हमारी पहचान। हर उपलब्धि में गूंज रहा है भारत का आत्मविश्वास। आज नहीं, सदियों से दुनिया में भारत का अपना प्रकाश। तो आइए आज फिर उस भारत को सलाम करते हैं जिसकी गाथा सुनकर दिल कह उठे। कार्यक्रम है चाय और क्लासिक्स, तो चाय की प्याली हो, यादों का एक प्यारा सा एहसास हो और सुरों की महफिल जो मन को दे उल्लास। चाय एंड क्लासिक्स का रंग है बहुत ही निराला, जानकारी मनोरंजन का सुंदर उजियाला, जहां गीतों की खुशबू हो, किस्सों का साथ हो, पुरानी धुनों से सचती हर एक बात हो, कभी कलाकारों की अनसुनी कहानी तो कभी संगीत की मधुर जुबानी। चाय की सुस्कियां लेते रहिए, संग यादों का सफर जो है चलता रहे, क्लासिक गीतों में छुपा जीवन का असर, हंसी भी, बातें भी, ज्ञान का उपहार भी, हर पल बन जाए जैसे संगीत का त्योहार। हम सभी जानते हैं कि आज कृष्ण कुमार कुन्नत और सायरा बानो जी का जन्मदिन है, तो चलिए कृष्ण कुमार कुन्नत के साथ साथ हरिहरन की आवाज सुरेश वाडकर और विनोद सैगल को भी आप सुनेंगे इस गीत में। गुलजार साहब का लिखा हुआ गीत जिसे विशाल ने संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स, 5:17 संचिता है साथ।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM
1: 100.1 FM गोल्ड पर चाय और क्लासिक्स। हाँ, समय के बहाव में हमने तब्दीलियों का स्वागत जरूर किया, लेकिन उन पुराने ट्रेडिशंस को हम भूले नहीं हैं। भारत ने गुजरात सुरक्षा नामक एक AI संचालित रेलवे सुरक्षा प्रणाली शुरू की है, जो ट्रेन की पटरियों के पास आ रहे हाथियों का पता लगा सकती है और ट्रैकों को रोकने के लिए ट्रेन कर्मचारियों को तुरंत सतर्क भी कर सकती है। इस प्रणाली में पटरियों के किनारे दबी हुई ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का उपयोग किया जा रहा है, जो संवेदनशील कानों की तरह काम करती है और हाथियों के कदमों से उत्पन्न कंपन को ग्रहण करती है। इसके बाद एक AI एल्गोरिदम इन संकेतों का विश्लेषण करता है कि लगभग 99.5% सटीकता के साथ ट्रेन चालक, स्टेशन मास्टर और नियंत्रण कक्ष को वास्तविक समय में चेतावनी भेजता है, ताकि ट्रेन को समय पर धीमा या फिर रोका जा सके। गजराज परियोजना का प्रथम परीक्षण आसाम में 70 किलोमीटर के क्षेत्र में किया गया है और अब इसका विस्तार असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में हाथी गलियारों से

करने वाले सैकड़ों किलोमीटर के ट्रैक तक कर दिया गया है। कैमरा जो है कैमरों के विपरीत ये हर मौसम में और रात में भी काम करता है और कुछ क्षेत्रों में इसे थर्मल कैमरों और ड्रोन के साथ एकीकृत कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रणाली ने पहली बार कई हाथियों को जान गंवाने से रोक सकेगा और खतरनाक ब्लैक स्पॉट को वन्य जीवों और ट्रेन दोनों के लिए ये सुरक्षित मार्गों में बदल दिया है। तो चलिए, बदलाव तो अच्छी बात है ना, लेकिन अपने ट्रेडिशन को नहीं छोड़ना चाहिए। और वाकई हम एहसानमंद है ऐसे आविष्कारों के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए कितना फायदेमंद है। लता मंगेशकर की आवाज है अगले गीत में, हसरत जयपुरी ने लिखा, शंकर जयकिशन ने इसे संगीतबद्ध किया। फिल्म का नाम जंगली, और जिस गीत को आप सुन रहे थे माचिस से उस ट्रैक को लिया गया था। चलिए सुनते हैं इस ट्रैक को फिल्म जंगली से। कार्यक्रम है चाय और क्लासिक।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: सरकारी उद्यम और तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के बारे में। प्रगति और प्रमुख पहले भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत कुशल और लागत प्रभावी लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाने हेतु राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 17 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। इस नीति का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, 2030 यानी 2030 तक भारत की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है रैंकिंग को सुधार कर उसे शीर्ष 25 देशों में शामिल करना और डेटा आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देना है। इसका कार्यान्वयन व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना द्वारा संचालित है, जो डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम परिसंपत्ति मानकीकरण मानव संसाधन विकास राज्य की भागीदारी और निर्यात आयात लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है। ये नीति क्षमता निर्माण आयोग के सहयोग से प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रयासों पर जोर देती है। प्रशिक्षण मॉड्यूल को वेबिनार कार्यशालाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से केंद्रीय और प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ एकीकृत किया जाता है। राज्य रसद योजनाएं जो भी हैं, 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सार्वजनिक नीति में रसद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी राज्य रसद नीतियों को अधिसूचित करके राष्ट्रीय रसद नीति NLP के साथ तालमेल बिठाया है। अब बात करते हैं लीड सर्वेक्षण की, यानी विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता रिपोर्ट का पांचवा संस्करण दिसंबर 2023 में लॉन्च किया गया था, जबकि छठा संस्करण जो है वो जनवरी 2024 में जारी किया गया। लीड्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं के आधार पर लॉजिस्टिक सुगमता का आकलन करता है। 10 मंत्रालयों के 33 लॉजिस्टिक संबंधित प्रणालियों को एकीकृत करते हुए जिससे नवाचार को बढ़ावा मिले। वर्तमान में 930 से अधिक निजी कंपनियां पंजीकृत हैं, जिनमें 95 आवेदन सक्रिय हो चुके हैं और 185 कंपनियों ने NDA पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ULIP माल की संपूर्ण रैंकिंग और ट्रैकिंग के लिए GST डेटा को भी एकीकृत करता है और उद्देश्य लागत में कमी लाया जा रहा है। लॉजिस्टिक्स की लागत को अगर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के लगभग 14-18% से घटाकर एकल अंक लगभग 10% या उससे नीचे कर पाए, समय और धन की बचत कर पाए, व्यापक गतिविधियों को गति दे, ईंधन की खपत कम करें, कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकें, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बात करते हैं बेहतर रैंकिंग की। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचनांक जो है LPI जो है वो भारत की स्थिति को सुधारना और शीर्ष देशों के में शामिल करना ही इसका उद्देश्य है। नीति की मुख्य जो विशेषताएं हैं जैसे कि यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके तहत सभी परिवहन डेटा को एक मंच पर लाया गया है ताकि विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बन सके। ई लॉजिस्टिक्स या फिर ई लॉग्स भी कहते हैं, उद्योग संघों और सरकार के बीच संवाद स्थापित करने

0: और समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए डिजिटल पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है। माल ढुलाई के लिए केवल सड़क मार्ग पर निर्भर रहकर रेलवे, शिपिंग और वायु मार्ग का संतुलित उपयोग भी किया जा रहा है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक बनाए गए हैं। भारत के सभी कंटेनरीकृत जो भी लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक है विकसित किया जा रहा है, और LDB इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे हम IoT भी कहते हैं, बिग डेटा और क्लाउड आधारित समाधानों के माध्यम से RFID तकनीक का उपयोग करते हुए भारत में एक्स इंपोर्टेड कंटेनरों की आवाजाही को रियल टाइम ट्रैकिंग प्रदान करता है। आज हम परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत बात कर रहे थे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के बारे में।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।

100.1 एफएम गोल खरा सोना के अंतर्गत कार्यक्रम है चाय और क्लासिक्स। चलिए अब चलने से पहले, कहीं भी जाने से पहले कुछ एहतियात तो बरतना बिल्कुल लाजमी है। और अगले 2-3 घंटे के दौरान झारग्राम और पश्चिम मिदनापुर के लिए कुछ चेतावनी है आबोहवा दफ्तर की ओर से। आज ही के दिन झारग्राम और पश्चिम मिदनापुर जिले के कुछ हिस्सों में मध्यम गरज और बिजली के साथ तीव्र गति से बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। तो झारग्राम और पश्चिम मिदनापुर के जो लोग हैं वो बिल्कुल सतर्क रहें, बारिश में ना निकलें और सुरक्षित रहें। कार्यक्रम है चाय और क्लासिक्स। 5:42 आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ। आज जानते हैं कि 23 अगस्त है और 23 अगस्त जन्मदिन है कृष्ण कुमार कुन्नत का, जिन्हें हम केके के नाम से जानते हैं। एक महान भारतीय पार्श्व गायक थे। अपनी भावपूर्ण बहुमुखी जो आवाज है उनकी, उसके लिए प्रसिद्ध उन्होंने हिंदी, तमिल और तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी से लेकर यहाँ तक कि बंगाली जो फिल्मों में तकरीबन सब मिलाकर 500 से अधिक हिंदी गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए। उनका जन्म नई दिल्ली के मलयाली माता पिता के घर में हुआ। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की और फिर करोड़ों दिल के वो निवास करने लगे अपनी आवाज़ की वजह से। फिल्मों में सफलता मिलने से पहले उन्होंने 1994 में शुरू करने से पहले 11 भाषाओं में 3,500 से अधिक विज्ञापन जिंगल्स, एडवर्टाइजिंग जिंगल्स जो है वो रिकॉर्ड करते थे। 1996 में फिल्म माचिस के छोड़ आए हम, जिस गीत को हम सुन चुके, इसी गीत से उन्होंने डेब्यू किया। इसके बाद हम दिल दे चुके सनम 1999 में उनकी आवाज तड़प तड़प के से जो उन्होंने जो शुरुआत की, उससे बाद पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर 1999 में अपना प्रतिष्ठित एकल पॉप एल्बम पल रिलीज किया। 2008 में हम सफर रिलीज हुई। अचानक 31 मई 2022 को कोलकाता में ही एक कॉलेज उत्सव में लाइव कॉन्सर्ट प्रदर्शन पूरा करने के कुछ ही समय बाद वो चल बसे। आज जन्मदिन है सायरा बानो जी का भी। सेवानिवृत्त अभिनेत्री जिनका जन्म 23 अगस्त आज ही के दिन 1944 को मसूरी भारत में हुआ और उन्होंने 1960 से 70 के दशक के दौरान कई लोक

प्रिय बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया। 1966 से लेकर 2021 में दिलीप कुमार साहब की मृत्यु तक दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार से शादी की। फिल्म निर्माता मियां एहसान उल हक और मशहूर अभिनेत्री नसीम बानू की बेटी है सायरा जी। उन्होंने अपने बचपन का अधिकांश समय जो है लंदन में ही बिताया और किशोरावस्था में ही हिंदी फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। 1961 में आई हिट फिल्म जंगली शम्मी कपूर के साथ, सभी जानते हैं कितनी हिट हुई थी ये फिल्म। फिर 1968 को पड़ोसन, पूरब और पश्चिम, विक्टोरिया नंबर 203, जमीर जैसी सफल फिल्मों को करने के बाद स्टारडम तो हासिल की ही। 60 और 70 के दशक में सबसे अधिक वेतन पाने वाली हिंदी फिल्म अभिनेत्रियों में शुमार हो गई। 11 अक्टूबर 1966 को दिलीप साहब का चले जाना। 1966 को दिलीप कुमार से जब उन्होंने शादी की और जब दिलीप कुमार चल बसे, इस बीच उन्होंने बहुत से फिल्में की, लेकिन 1921 तक उनके जीवन के अंतिम वर्षों में उनकी देखभाल में ही उन्होंने अपना मनोनिवेश किया। कुछ गीत जो हम सुनना चाहेंगे, इन पर फिल्माया हुआ सायरा बानू पर फिल्माया हुआ एक वैराग फिल्म से एक गीत लता मंगेशकर की आवाज में। कार्यक्रम है चाय और क्लासिक्स। 5:46:26 आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ। छोटी सी

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर
1: 100.1 FM गोल्ड पर चाय और क्लासिक्स। और इस वक्त 5:51 हुए हैं। भारत की पारंपरिक वेशभूषा केवल पहनावे का साधन नहीं, बल्कि इतिहास, जलवायु, शिल्प, व्यापार और सामाजिक सांस्कृतिक पहचान की एक जीवंत कहानी भी है। अब साड़ी का इतिहास जो है, साड़ी की बात अत्यंत पुराना है और इसका स्वरूप समय तथा क्षेत्र के अनुसार बदलता रहा है। आज की साड़ी को किसी एक काल या व्यक्ति की खोज मानना सही नहीं होगा। संग्रहालयों में 18वीं शताब्दी या 18वीं या 19वीं शताब्दी की भारत निर्मित रेशमी और सूती साड़ियां सुरक्षित हैं। रोचक बात यह है कि कुछ ऐतिहासिक साड़ियों की लंबाई 20 फुट से लेकर से भी अधिक है। इससे पता चलता है कि साड़ी केवल पोशाक नहीं बल्कि बुनाई और वस्त्र कला की विकसित परंपरा थी। एक जमाने में प्राचीन भारत के महीन सूती वस्त्र इतने प्रसिद्ध थे कि यूनानी और रोमन लेखकों ने भी भारतीय कपड़ों का उल्लेख किया। विशेष रूप से महीन कपास और मसलिन जैसे बुनाई भारतीय वस्त्र कौशल की एक पहचान बन गई थी। ये परंपरा केवल स्थानीय उपयोग तक सीमित नहीं रही। भारतीय वस्त्र समुद्री व्यापार के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचे। 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में रंगीन भारतीय सूती कपड़ों की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि वहां की जो कपड़ा छपाई उद्योग पर भी इसका प्रभाव पड़ा। बात करते हैं धोती की। धोती भारतीय पुरुष की प्राचीन पारंपरिक वेशभूषा के रूप में हम सभी जानते हैं। इसकी खासियत यह है कि ये मूलतः एक लंबे बिना सिले हुए कपड़े को शरीर के चारों ओर लपेटकर पहनी जाती है। प्राचीन भारतीय कला में धोती जैसी परिधान पहने पुरुषों के अनेक चित्र मूर्तियां मिलती हैं। एक रोचक संग्रहालय उदाहरण में दूसरी तीसरी शताब्दी की भारतीय कांस प्रतिमा पर कमर में बंधा धोती जैसा परिधान दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे ही कुछ दिलचस्प बातों के साथ। एक मधुर गीत भी हो जाए। शागिर्द है फिल्म का नाम, लता मंगेशकर की है आवाज, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम है 100.1 FM गोल्ड खरा सोना के अंतर्गत। इस वक्त 5:54 हो रहे हैं। सुनते हैं इस गीत को। आपके साथ हूं मैं संचिता।

शागिर्द फिल्म से इस गीत को सुन रहे थे आप। कार्यक्रम है चाय और क्लासिक्स। 6 बजे हम रूबरू होंगे हिंदी और अंग्रेजी खबरों के साथ। 6:10 पर हम सुनेंगे विश्लेषण। 6:20 पर लेकर आएंगे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठक 2026 के अंतर्गत सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने खेल विकास, युवा भागीदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने व्यवहारिक और सतत सहयोग के साथ ब्रिक्स खेल भागीदारी का निर्माण करने का आह्वान किया। उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धा और खेल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी साझा करने का प्रस्ताव किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
2: हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है। आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरईसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। ICMR के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पडिकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला

में 1-0 से आगे है। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह। श्रोताओं, बुंदेलखंड का नाम आते ही हमारे सामने एक ऐसा इलाका आता है जहां पानी हमेशा से एक बड़ी चिंता रहा है। कम और अनियमित बारिश, सिंचाई की सीमित सुविधा और कई इलाकों में भूजल की कमी, इन सब का सीधा असर खेती और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। पेयजल, सिंचाई और जल आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियां बुंदेलखंड क्षेत्र में लंबे समय से बनी रही हैं। इन्हीं समस्याओं के हल के रूप में केन बेतवा लिंक परियोजना विकसित की जा रही है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है, इसे किस तरह विकसित किया जा रहा है और इससे बुंदेलखंड में सिंचाई, पेयजल, खेती और लोगों की आजीविका पर किस तरह से असर पड़ने की उम्मीद है। श्रोताओं, केन बेतवा लिंक परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत शुरू होने वाली पहली बड़ी परियोजना है जो निर्माण के चरण में पहुंची है। इस परियोजना के अंतर्गत केन नदी का पानी बेतवा नदी के क्षेत्र तक पहुंचाने की योजना है। इसके लिए मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में दौधन बांध, लिंक नहर और कई अन्य जल एवं ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि केन बेतवा लिंक परियोजना किस तरह तैयार की जा रही है और इसका पूरा ढांचा क्या है।
1: बेतवा लिंक परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में केन नदी पर लगभग 97 मीटर ऊंचा दौधन बांध बनाया जा रहा है। यह बांध खजुराहो से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। दौधन बांध से लगभग 217 किलोमीटर लंबी केन बेतवा लिंक नहर निकलेगी जो झांसी के पास बरुआ सागर में जाकर मिलेगी। यानी परियोजना का मूल उद्देश्य केन नदी के पानी को लिंक नहर के जरिए बेतवा नदी के क्षेत्र तक पहुँचाना है। लेकिन परियोजना का ढांचा केवल बांध और एक नहर तक सीमित नहीं है। इसमें लोअर और परियोजना, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना भी शामिल है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मौजूदा नहरों को बेहतर बनाने, तालाबों और वियर्स की मरम्मत, नए बैराज बनाने तथा सिंचाई और पेयजल से जुड़ी अन्य सुविधाएं विकसित करने का भी प्रावधान है। पूरी परियोजना की लागत 44,605 करोड़ रुपए है। परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को किया था। फिलहाल दौधन बांध का निर्माण कार्य चल रहा है, लिंक नहर का काम अभी शुरू होना बाकी है। लोअर और परियोजना, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना भी निर्माणाधीन है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अन्य संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। पूरी परियोजना को वर्ष 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब बात करते हैं इस परियोजना से बुंदेलखंड के किन क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन तथा उत्तर प्रदेश में बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जैसे जिले परियोजना से लाभान्वित होंगे। परियोजना पूरी होने पर 10,62,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलने की उम्मीद है। लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा परियोजना में 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का भी उत्पादन होगा। यानी केन बेतवा लिंक परियोजना का दायरा केवल खेतों तक पानी पहुंचाने तक सीमित नहीं है, इसमें सिंचाई, पेयजल और ऊर्जा तीनों को एक साथ जोड़ा गया है।
0: श्रोताओं, अब तक हमने समझा कि केन बेतवा लिंक परियोजना के जरिए पानी को एक नदी क्षेत्र से दूसरे नदी क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए किस तरह का ढांचा तैयार किया जा रहा है। लेकिन किसी भी जल परियोजना का असली महत्व तो केवल बांध, नहर या बैराज बनाने तक नहीं होता। असली सवाल ये है कि जब पानी उपलब्ध होगा तो उससे खेतों, किसानों, आम लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। इसी को समझने के लिए अब जानते हैं कि इस परियोजना से क्षेत्र पर क्या असर पड़ सकता है।
1: बेतवा लिंक परियोजना से सिंचाई के लिए पानी की बेहतर उपलब्धता होने पर बुंदेलखंड के किसानों की बारिश पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। पानी समय पर उपलब्ध होने से किसान समय पर फसल की बुआई कर सकेंगे, एक से अधिक फसल लेने की संभावना बढ़ सकती है और फसल उत्पादकता में भी सुधार हो सकता है। इसके साथ ही किसान अधिक लाभ देने वाली फसलों की ओर भी जा सकते हैं। इसका असर केवल फसल उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा, खेती में सुधार से किसानों की आय और ग्रामीण आजीविका को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। सिंचाई के साथ परियोजना

0: में पेयजल को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। पानी के बेहतर उपलब्धता का मतलब केवल रोजमर्रा की जरूरत पूरी होना नहीं है, इससे स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार हो सकता है। परिवारों खासकर महिलाओं को पानी लाने में कम समय लगेगा और इससे बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और जीवन की गुणवत्ता पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। निर्माण के दौरान सिविल निर्माण, इंजीनियरिंग, परिवहन, सामग्री की आपूर्ति, मशीनों के संचालन और अन्य सेवाओं में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों, वाहन मालिकों, आपूर्तिकर्ताओं और सेवा देने वाले लोगों को भी परियोजना से बड़ी आर्थिक गतिविधियों का लाभ मिलेगा। जहां सतही पानी उपलब्ध होगा, वहां भूजल पर निर्भरता भी कम हो सकती है। लिंक नहर से जुड़े कुछ तालाबों को पानी देने और उन्हें पुनर्जीवित करने की भी योजना है। इससे कुछ क्षेत्रों में भूजल रिचार्ज में मदद मिल सकती है। हालांकि भूजल स्तर में वास्तविक सुधार स्थानीय जमीन, पानी की स्थिति और इस्तेमाल पर भी निर्भर करता है। इस तरह देखें तो इस परियोजना का असर खेत से आगे बढ़कर पूरे क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। खेती और आय में सुधार के साथ रोजगार और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे। इससे मजबूरी में होने वाले पलायन को कम करने में भी मदद मिल सकती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, परियोजना से प्रभावित परिवार और पर्यावरण। दौधन बांध, जलाशय, लिंक नहर, पावर हाउस, सड़क और अन्य जरूरी निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में कुल 22 गांव प्रभावित हैं, पन्ना जिले में 8 और छतरपुर जिले में 14 गांव। ऐसे प्रभावित परिवारों के लिए भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था लागू कानून और विशेष पुनर्वास पैकेज के अनुसार की जा रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पूरी परियोजना में लगभग 5039 प्रभावित परिवारों के लिए 629 करोड़ 87 लाख रुपए के पुरस्कार पारित किए गए हैं, जिनमें से लगभग 604 करोड़ 74 लाख रुपए यानी कि करीब 96% राशि का भुगतान किया जा चुका है। परियोजना के साथ पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण को भी ध्यान में रखा गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना का पन्ना टाइगर रिजर्व और आसपास के क्षेत्र से संबंध होने के कारण वन और जैव विविधता संरक्षण महत्वपूर्ण हिस्सा है। परियोजना से होने वाली संभावित पर्यावरणीय क्षति को कम करने और उसकी भरपाई के लिए प्रतिपूरक वनीकरण, वन्य जीव संरक्षण, आवास विकास और कैचमेंट क्षेत्र में सुधार जैसे उपाय किए जा रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व और आसपास के क्षेत्रों के लिए इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान भी तैयार किया गया है। डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के लिए पूरे वर्ष न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव बनाए रखने का प्रावधान है, ताकि कृषि, पेयजल जरूरतों और नदी के पर्यावरण की सुरक्षा बनी रहे। समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
1: श्रोताओं, केन बेतवा लिंक परियोजना को केवल एक बांध या नहर परियोजना के रूप में देखना इसके व्यापक महत्व को सीमित कर देगा। इस परियोजना का उद्देश्य पानी की उपलब्धता को बेहतर बनाकर सिंचाई को मजबूत करना है। सिंचाई बेहतर होगी तो खेती में बदलाव की संभावना बढ़ेगी, खेती में सुधार होगा तो किसानों की आय और ग्रामीण आजीविका को सहारा मिलेगा, पेयजल की उपलब्धता बेहतर होगी तो लोगों के जीवन पर असर पड़ेगा और निर्माण तथा कृषि गतिविधियों से रोजगार और आर्थिक अवसर भी बढ़ सकते हैं। इस तरह केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड में जल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसका प्रभाव सिंचाई और पेयजल से आगे बढ़कर खेती, आजीविका और क्षेत्रीय विकास तक पहुंच सकता है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण के आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक मोहित सिंह।

0: आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।
1: चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड खरा सोना के अंतर्गत इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और इस वक्त 5:20 और 37 सेकंड। कहते हैं कि अगर बुलंदी पर जाना है तो इच्छा होनी चाहिए और सफलता पाने के लिए कोशिश भी करनी चाहिए। आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त को हम मनाते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। भारत सरकार ने चंद्रयान 3 के सफलता के बाद इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया था। अब बात करते हैं कि मैथ्स में अगर किसी को 51 नंबर मिले हो लेकिन हौसला था बहुत बड़ा, पवन चांदना की बात कर रही हूं। पवन चांदना ने बना दिया भारत का पहला प्राइवेट स्पेस रॉकेट। हैदराबाद में पले बड़े पवन चांदना एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। बचपन से ही उनकी रुचि मशीन और तकनीक की को समझने में थी। हालांकि पढ़ाई के दौरान गणित का मजबूत विषय नहीं था और 51 यानी कि 51 नंबर ही लाए थे। स्कूल की परीक्षा में गणित में सिर्फ 51 अंक आने के बाद शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये छात्र आगे चलकर भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर का बड़ा चेहरा बनेगा। लेकिन पवन कुमार चंदाना ने यह साबित कर दिया कि सफलता केवल अंकों से तय नहीं होती। आज उनकी कंपनी एरोस्पेस का विकसित विक्रम 1 रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचने वाला भारत का पहला प्राइवेट तौर पर विकसित रॉकेट बन गया है और ये उपलब्धि न केवल कंपनी के लिए बल्कि पूरे देश के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। गणित में थे कमजोर लेकिन मशीनों में तो नहीं, दिलचस्पी बिल्कुल कम नहीं थी। तो इसीलिए अगर इतिहास रचना है तो सपना और इच्छा बुलंद हो तो क्या बुलंदी बिल्कुल भी दूर नहीं। आगे बढ़ेंगे एक गीत के साथ, वो है लता मंगेशकर की आवाज में आई मिलन की बेला फिल्म। हसरत जयपुरी ने लिखा और शंकर जयकिशन ने इसे संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम है चाय और क्लासिक्स, इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। सुनते रहिए इस गीत को, आते हैं वापस। वैसे आपका और हमारा ये जो सफर है ये 6:30 तक ही है, उसके बाद हम जुड़ेंगे जिस कार्यक्रम के साथ वो है मार्केट मंत्रा।

5:26:27 100.1 FM गोल्ड खरासोना के अंतर्गत जिस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए थे आप अभी तक, वो है चाय और क्लासिक्स। आपके साथ थी मैं संचिता। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगला कार्यक्रम है मार्केट मंत्रा। तब तक आप सुनते रहिए जिस गीत को उसे लिया गया है, झुक गया आसमान फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी ने गीत के बोल लिखे और शंकर जयकिशन ने इसे संगीतबद्ध किया। इजाजत दें, मिलते हैं एफएम रेनबो पर लेकर एक और कार्यक्रम। तब तक सुनते रहिए इस गीत को।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking calls from our listeners on mutual fund-related queries. But do remember that we do not address fund-specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Your anchors for today's show, Subodh Mishra and myself, Sarabjeet Kaur.
1: Dhanyavad Sarabjeet aur namaskar shrotaon, karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। बस याद रखें कि हम किसी खास म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444-2371-0481 और 2371-7106। श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
2: जी, धन्यवाद।
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज ओवर 23,000 करोड़ रुपीज इनटू इंडियन इक्विटीज इन अगस्त सो फार। इन बुलियन मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस राइज फॉर थर्ड स्ट्रेट वीक एंड सिचुएशन इन वेस्ट एशिया रिमेन्स टेंस।
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त में अब तक भारतीय शेयर बाजार में 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। सर्राफा बाजार में लगातार तीसरे हफ्ते भी सोने और चांदी में चमक कायम और पश्चिम एशिया में तनाव जारी।

0: And before we go just any further in the program, may we once again remind our dear listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक श्रोता जुड़ गए हैं, पहले उनके पास ही चलते हैं। सरबजीत
0: बिल्कुल,
1: यूपी से विवेक हमारे साथ हैं। विवेक स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
2: हाँ, मार्केट में कटी और एक्सपर्ट को नमस्कार।
1: नमस्कार
2: सर, मैं म्यूचुअल फंड में एक SIP के द्वारा इक्विटी क्लास में 8 से 9 ईयर से इन्वेस्टेड हूँ और मेरे पास अभी एक लमसम अमाउंट है जिसे मैं निवेश करना चाहता हूँ इक्विटी क्लास में। मैं इसे SPV के माध्यम से, मेरे दो प्रश्न है, SPV के माध्यम से मैं इसे 12 महीनों में स्प्रेड कर लगाना चाहता हूँ, क्या ये सही है समय अवधि या इसको चेंज करना होगा। मेरा दूसरा प्रश्न है कि मैं एक तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, मतलब इक्विटी मिड कैप और स्मॉल कैप, इनमें मुझे रेशो क्या रखना चाहिए सर? जैसे मेरा पोर्टफोलियो है उसमें मुझे कितना परसेंट रखना चाहिए, और जैसे मैं अग्रेसिव इन्वेस्टर के रूप में चाहता हूँ तो मुझे मैं अपने उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप को शामिल करना चाहता हूँ और एक वैल्यू फंड भी रखना चाहता हूँ, तो कृपया इसका जो रेशो है वो मुझे गाइड करें।
3: विवेक जी, जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि एसटीपी के माध्यम से वो लमसम आप इन्वेस्ट करें, तो ये बिल्कुल एक अच्छी अप्रोच रहती है। ये काम सबसे ज्यादा तब आती है जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा ज्यादा देर पड़ा रहता है और डर रहता है कि कोई कुछ यूज आ जाएगा इसका और आप उसे वहां पर खत्म कर देंगे। तो एसटीपी के माध्यम से फायदा ये रहता है कि वो लमसम आपने ऑलरेडी एक फंड में डाल दिया, अब आप उसको छेड़ेंगे नहीं और आप वहां पर अपने फंड को एक इंस्ट्रक्शन दे देंगे, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, कि वो इस फंड से उस फंड में डाले। यहाँ पर बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि आपको जो जिस फंड से आप एसटीपी कर रहे हैं जनरली ये लिक्विड फंड रखना चाहिए ताकि उतार चढ़ाव कम रहे, तो आपका बेस अमाउंट पे उतना फर्क ना पड़े। जो आप डेट फंड लेंगे और जहां से आप उसमें से जिस इक्विटी फंड में जाएंगे ये सेम AMC के रहने चाहिए और हर इन्वेस्टमेंट जो यहां से कट रही होगी उस पर एक टैक्स इम्पैक्ट होगा जो कि तब नहीं होता है जब हम अपने बैंक अकाउंट से करते हैं। तो आप इसके बेसिस पर ये डिसीजन ले सकते हैं। जो आपका दूसरा सवाल है कि कोर पोर्टफोलियो और जो एक हम सप्लीमेंट्री पोर्टफोलियो कहते हैं जहाँ पे हम मिड स्मॉल को

0: ज़्यादा एलोकेट कर पाते हैं, बट कोर को थोड़ा रिलेटिवली स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स में रखना चाह रहे होते हैं. तो जैसे आपने कहा वैल्यू, फ्लेक्सी, मल्टी, ये सारी कैटेगरीज आप कोर पोर्टफोलियो के लिए बिल्ड कर सकते हैं, और मिड एंड स्मॉल कैप आप अपने सप्लीमेंट्री के लिए कर सकते हैं, जिसमें जैसे आपने बोला आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप 8-9 साल से कर रहे हैं और आप आगे भी करना चाहते हैं, तो आप 30% का एक रफ एलोकेशन अपने मिड और स्मॉल कैप एक्सपोजर के लिए रख सकते हैं. बट एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि जब आप फ्लेक्सी, वैल्यू या मल्टी कैप कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड के चुनाव पर डिपेंड करता है कि वो फंड मिड और स्मॉल कैप में कितना एक्सपोजर लेता है. तो जब आप अपना मिड और स्मॉल कैप देख रहे हो उसको सिर्फ उन मिड स्मॉल कैप फंड्स में ना देखिए, एक होलिस्टिक पिक्चर देखिए अपने पोर्टफोलियो में कि मल्टी कैप, वैल्यू या फ्लेक्सी में से कितना मिड और स्मॉल कैप आ रहा है, और रिलेटिवली इसको बैलेंस आप 30% के अराउंड का रख सकते हैं.
1: जी, विवेक जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था और स्नेहा आपने जो जवाब दिया है ये लगता है म्यूचुअल फंड के हर निवेशक के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि अक्सर ये लोग पूछते रहते हैं. इसके अलावा भी कि जैसे हम गोल्ड में या सिल्वर में कितना परसेंट रखें और हमारे पोर्टफोलियो का कितना परसेंट इसमें होना चाहिए, ये सवाल और इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं और इसके जवाब भी स्टैंडर्ड हैं, लेकिन शायद हमें कार्यक्रम में अक्सर इनको रिपीट करने की ज़रूरत होती है.
0: बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही कोई एसेट क्लास बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, बहुत बुरा करती है, ये सवाल एकदम से टॉप ऑफ द माइंड हो जाते हैं. इसलिए इम्पॉर्टेंट रहता है कि इन पे बार बार मतलब चर्चा हो, लोगों को भी अच्छा लगता है. तो जहां तक गोल्ड और सिल्वर की एलोकेशन की बात रहती है, ये एक तरीके का हेज रखते हैं कि जब इक्विटी मार्केट थोड़ी अनसर्टेन है ये आपको एक तरीके का इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं. पर वही रहता है जो चीज बहुत बढ़ रही होती है या मतलब उसका डायरेक्शन थोड़ी एक अलग लेवल पे होती है, उसको चेज ना करके ये जो एक प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब इनमें कोई साइंटिफिक रूल नहीं है, ये आपको एक होलिस्टिक पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करता है. तो 5-10% की एलोकेशन आप इन टाइप के एसेट क्लासेस में रख सकते हैं.
2: सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एलोकेशन ऑफ एसेट्स एट सच ग्रेट डिटेल एंड यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एसटीपी इन्वेस्टमेंट मोड, एंड आई अंडरस्टैंड दैट इट क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल बैरियर वेर यू डोंट स्पेंड द मनी विच इज ईजिली अवेलेबल इन योर बैंक अकाउंट एंड देन पार्क इट फॉर अ डेजिग्नेटेड टाइम एंड देन यूटिलाइज इट मोर fruitfully. So in the backdrop of this, why are investors increasingly choosing mutual funds over keeping all their savings in traditional avenues?
0: Right. So I guess that has something to do with how the mutual fund awareness has, let's say anybody or everywhere you just mention the word mutual fund sahi hai, and everybody let's say watching cricket will also be able to understand because of the kind of correct advertisements and awareness that is being created about a very important product. Plus India as a market has always been tilted towards, so much tilted towards traditional asset classes that we have we had stopped appreciating other asset classes beyond fixed income. So that is where mutual funds come in.
2: Sneha, we'll come back with that discussion. Meanwhile, we'll connect with our next caller from Delhi. Pradeep ji, swagat hai, sawal poochhe.
3: Namaskar, Market Mantra team.
2: Ji, namaskar.
3: Madam, mere paas hai na ek flexi cap, ek mid cap, ek small cap hai. Teenon mein meri SIP chal rahi hai. To kya mujhe ek multi asset fund add karna chahiye? Aur dusra mera question lump sum ke bare mein hi hai, kyunki abhi mid cap aur small cap मतलब काफी ऊपर चल रहा है, लाइफ टाइम हाई जो भी है. तो अगर मुझे 50,000 रुपए का लमसम करना है इस मंथ में, तो मुझे फ्लेक्सी कैप में डालना चाहिए, मिड कैप में डालना चाहिए, स्मॉल कैप में डालना चाहिए?
0: जी प्रदीप जी, जो आपका पहला सवाल था कि आप फ्लेक्सी, मिड और स्मॉल में ऑलरेडी कर रहे हैं इन कैटेगरीज में, और आप मल्टी एसेट में जाएं या ना जाएं, तो मल्टी एसेट एक डिफरेंट तरीके की बॉल गेम हो जाती है इन कैटेगरीज से, जिनके नाम में ही पता चल जाता है ये कहाँ, यूजुअली कहाँ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. अब मल्टी एसेट जैसा इसका नाम है, ये डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है. इसका मैंडेट बस इतना रहता है कि एक टाइम पर मिनिमम 10% इनको 3 एसेट क्लासेस में रखना चाहिए. जनरली ये देखा गया है ये फंड्स इक्विटी, डेट और गोल्ड में ज़्यादा एक्सपोजर रखते हैं, और इसमें डायनामिकली चेंज करते रहते हैं. तो मल्टी एसेट अगर आप चाहते हैं कि ये एक्सपोजर आपके पास आए, एक ऐसा पोर्टफोलियो आपके पास रहे जो डायनामिकली चेंज करता रहे, तो आप बिल्कुल इसमें कर सकते हैं. बट इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है, जब आप फंड सिलेक्शन पे जाएं तो आपको ये देखना पड़ता है कि हर फंड किस तरीके की इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी हम किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वी नो वॉट काइंड ऑफ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ वी आर गेटिंग इनटू. तो यहाँ पे थोड़ी प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ वेयर द फंड इज इन्वेस्टिंग थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए बेटर रहता है कि पूरे अच्छे से हम रिसर्च करें. बट हैविंग सेड दैट मल्टी एसेट आपके

0: पोर्टफोलियो में ना होकर अगर आप अलग से डेट और अलग से गोल्ड भी लेते हैं तो भी आप कुछ मिस आउट नहीं कर रहे हैं एज सच। और आपका जो दूसरा सवाल था कि लमसम कहाँ किया जाए, तो मेरा मानना ये है कि लमसम से कोई आपको एक मैसिव फ़ायदा अगर हो रहा होगा कहीं पे एज ऑफ टुडे, आपको नहीं पता है उससे एक मैसिव नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आप एक बड़ा अमाउंट एक ही साथ किसी एक ऐसी एसेट क्लास में डाल रहे हैं जहाँ पे जब चीज़ें हिलती हैं तो काफ़ी बुरा हिल जाती हैं और जब बढ़ती हैं तो काफ़ी बुरा बढ़ जाती हैं। तो एक वो जो एक कॉइन फ्लिप वाली प्रोबेबिलिटी रहती है ना, उसमें मैं थोड़ा झिझकती हूँ करने से। तो लमसम पे मेरा मतलब क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाती हूँ तो मेरी अप्रोच ऐसी रहती है कि इक्विटी में मैं लमसम ना करूँ। अगर आप मार्केट टाइमिंग करके फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं और आपको भरोसा है अपने आप पे, अपनी स्ट्रैटेजी पे, तो आप इसको थोड़े एक जो एक फ़न एलोकेशन होती है ना आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे, वो इम्पैक्ट ना करते हुए एक ऐसा अमाउंट लेना, ना ही वो आपके एक्सपेंसिस को इम्पैक्ट कर रही है, ना ही आपके पूरे बाकी के कोर को इम्पैक्ट कर रही है, और फिर ही आप ये डिसीजन लेना
1: जी। और देखते हैं अब कि FPIs का क्या हाल रहा है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, FPI ने अगस्त में अब तक भारतीय शेयरों में खरीदारी जारी रखी है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार FPI ने इस महीने अब तक भारत के शेयर बाज़ार में 23,544 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कुल निवेश में 14,118 करोड़ रुपए स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीदारी के माध्यम से आए, जबकि 9,426 करोड़ रुपए प्राथमिक बाजार के माध्यम से निवेश किए गए। जुलाई में तेज हुई खरीदारी की गति अगस्त में भी जारी रही, जिससे मजबूत हमारे मजबूत बुनियादी आंकड़ों और तिमाही आमदनी का समर्थन मिला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में ज़्यादा बढ़े हुए मूल्यांकन को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण वैश्विक तरलता भी उभरते बाजारों की ओर वापस आ रही है। इस बीच ऋण बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के रुख में मिला जुला रुझान देखने को मिला है। अगस्त में अब तक FPI ने जनरल लिमिट रूट के माध्यम से ऋण प्रतिभूतियों से 995 करोड़ रुपए निकाले हैं, जबकि VRR से 83 करोड़ रुपए की निकासी दर्ज की गई। इसके उलट FAR से 852 करोड़ रुपए का निवेश हासिल हुआ है।
2: एंड विनोद जॉइंस अस फ्रॉम दिल्ली, सवाल पूछे।
3: पूरी मार्केट मंत्रा टीम को मेरी तरफ से नमस्कार।
2: जी नमस्कार।
3: मैं मैडम से ये जानना चाहूंगा कि मैं 2016-17 से अभी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूँ, तो उसमें तरह तरह की मेरे पास स्कीम है, और लेकिन थोड़ा सा कुछ दिन से परिवार के दबाव में महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं इधर उधर की एग्जाम्पल सेट करके मुझे बताते हैं कि आप कुछ म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेच के रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करो, बट तो मैं इस फैसले को लेकर झिझक रहा हूँ। मुझे मैम थोड़ा गाइड करेंगे कि यह कैसा फैसला रह रहे, क्या ये सही है कि इक्विटी से कुछ यूनिट्स बेच के रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना, प्लीज बताएं।
0: जी विनोद जी, जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि हम इंडिया में जनरली एक फिक्स्ड इनकम मार्केट बन जाती है ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की जब हम बात कर रहे थे, तो रियल एस्टेट भी एक ऐसी मार्केट रही है जिसमें जो हमारे पेरेंट्स या उनसे पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वाले टाइम का ज़माना था, उसमें रियल एस्टेट को एक बड़ा अलग तरीके से देखा जाता था, इसीलिए शायद से आपके फैमिली आपको वो कह रही है। अब इंडिया में जो रियल एस्टेट की एक सिचुएशन रहती है, उसमें एक तरीका ये देखा गया है कि आपको पता नहीं होता है कि आप जहाँ पे अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन के बाद कुछ मटेरियलाइज होगा या नहीं होगा। एज एन एसेट क्लास जो लिक्विडिटी की एक प्रॉब्लम रहती है उसके बारे में कुछ हो नहीं पाता है, या फिर काफ़ी हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी रहती है। तो मेरा मानना ये रहता है कि जब इक्विटी और रियल एस्टेट को कंपेयर करा जाए इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं आप चाहते हैं वो पैसा जब आपको चाहिए आप यूटिलाइज कर पाएं, क्योंकि नहीं तो हम इन्वेस्ट क्यों ही कर रहे हैं अपना पैसे बचा कर। तो लिक्विडिटी मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो म्यूचुअल फंड्स आपको बेटर देते हैं दैन रियल एस्टेट। बाकी अगर आप रियल एस्टेट का एक्सपोजर चाहते हैं तो अभी का टाइम एक ऐसा आया है जब रीट्स जो लिस्टेड रियल एस्टेट रहता है उनके एक्सपोजर पे आपको फंड्स आने वाले हैं। वैसा एक फंड अभी अभी लॉन्च हुआ है, उसका थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड होने देते हैं और हम तब देख सकते हैं कि अगर वो जो प्रॉमिस दे रहा है, क्योंकि वो एक इंडेक्स फंड है तो इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर का ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है, तो एक चीज़ को ट्रैक करके आपको रिटर्न मिल जाता है जो एक रीट्स एज ए मार्केट का होता है।

0: तो मेरे हिसाब से वो एक ज्यादा बेनिफिशियल एरिया रह सकता है, और आपको एट द सेम टाइम रियल एस्टेट का एक्सपोजर दे सकता है एक डिफरेंट तरीके से और एक लिक्विड तरीके से. तो जब इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है आप इसको देख सकते हैं.
1: जी, चेन्नई से काशीनाथ जी जुड़ गए हैं हमारे साथ. स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
2: हेलो.
1: जी काशीनाथ जी, सवाल पूछें.
2: यस, मैं काशीनाथ फ्रॉम चेन्नई. मेरा सवाल ये है कि आपने पहले जो सब फंड का नाम ले लेते थे, जैसे कि पहले, अभी कुछ नाम नहीं लेते. मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ. जैसे कि आप पहले बोल देते थे, जैसे कि धीरेंद्र सर ये सब बोलते थे, लेकिन अभी वो सिस्टम बंद कर दिए, ऐसा क्यों? इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा, धन्यवाद.
3: सो काशीनाथ जी, ये सिर्फ एक पॉलिसी मैटर है, जस्ट अ चेंज इन द सिस्टम इन विच द प्रोग्राम इज नाउ बीइंग प्रेजेंटेड, नथिंग मोर देन दैट.
1: जी, और ऐसा ना लगे कि हम किसी खास कंपनी या उसको बढ़ावा दे रहे हैं.
3: और जैसा कि हम कहते हैं कि पैसा आपका है, तो सोच और समझ भी फाइनल और डिसीजन भी फाइनली आपका ही होना चाहिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली. वरुण जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
4: मैम गुड इवनिंग.
3: गुड इवनिंग
4: मैम. मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा दो फंड ऐसा है जो जिसमें पिछले एक डेढ़ साल से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, उसी कैटेगरी में दूसरा फंड अच्छा कर रहा है. अब मेरा जो कैपिटल गेन्स अगर मैं स्विच करता हूँ काफी ज्यादा बनता है, तो क्या मुझे कैपिटल गेन्स के बारे में ना सोच के क्या मुझे अभी दूसरा फंड में उसी कैटेगरी में स्विच करना चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ उसी कैटेगरी में? यही मेरा क्वेश्चन है. थैंक यू.
0: जी वरुण जी, अज्यूमिंग कि हम यहाँ पर इक्विटी फंड्स की बात कर रहे हैं, तो पहली बात कि एक डेढ़ साल बहुत ही कम टाइम हो जाता है इक्विटी फंड्स की परफॉर्मेंस पे एक डिसीजन लेने के लिए. मैं मानती हूँ निराशाजनक जब आपको अपना पैसा दिख रहा होता है तो डाउट हमेशा आता है, बट आप देखें तो मतलब ये साल तो स्पेशली सेंसेक्स ने भी कुछ रिटर्न नहीं दिया है. और जो सिचुएशन आप अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सेम कैटेगरी में दूसरा फंड अच्छा कर रहा है, ऐसे करते करते आपको पता नहीं है कि कब ऐसा हो जाएगा जब आप एक कलेक्टर ऑफ फंड्स बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा हर पल हर समय आपको लगेगा कि आप जिस फंड में इन्वेस्टेड है उससे बेहतर फंड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये एक हाइंडसाइट की बात हो जाती है. अब अगर आज हम चर्चा करते हैं कि कौन सा फंड अच्छा है कौन सा फंड बुरा है, तो उसका एक जवाब ये रहता है कि वक्त बताएगा, और जब आपने इन्वेस्ट करा है तब उसके अकॉर्डिंग ही जज करना चाहिए. तो बिल्कुल, जब भी हम ऐसे स्विचिंग कर रहे होते हैं हमें गेन्स और लोड्स का ध्यान रखना चाहिए. बट मेरे हिसाब से जो आप समय बता रहे हैं जितने होराइजन के लिए आप अभी इन्वेस्टेड रहे हैं, गिवन दैट ये वाला टाइम एज एन इंडियन मार्केट का भी काफ़ी फ्लैट टू फॉलिंग रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी आप अपना ये डिसीजन पे एक्ट ना करके थोड़ा समय और दीजिए. कम से कम लेट्स से 3 ईयर्स उस फंड को दीजिए परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि अभी उसने एक ही मार्केट साइकिल देखी है जब से आपने इन्वेस्ट करा है. जबकि अगर आप उसके रोलिंग रिटर्न्स, जो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताता है कि डिफरेंट साइकिल्स में उसने कैसा प्रदर्शन करा है, उसको ध्यान में रखते हुए आई वुड से कि आप अपना ये डिसीजन अभी होल्ड करिए.
1: स्नेहा, लेकिन जब ऐसी बात करते हैं कि एक ही कैटेगरी के एक फंड में अच्छा प्रदर्शन है और दूसरे में उतना अच्छा नहीं है, मैं बुरा नहीं कहना चाहता, मान लीजिए अगर कितने के फर्क को हम माने कि हमें स्विच करने का फैसला लेना चाहिए, 0.2% का, 0.5% का, 1% का?
0: मैं बताती हूँ, मेरा जो नज़रिया रहता है इसको देखने का वो इतना सा रहता है कि जब आपने इन्वेस्ट करा था किसी फंड में और जो एक दूसरा फंड है, पहले तो ये देखना चाहिए कि क्या वो दोनों सेम स्ट्रेटजीज भी हैं, क्योंकि एक कैटेगरी में, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, लेट्स से मल्टी कैप कैटेगरी में भी, जहाँ पे सेबी कहता है कि आप इतना इतना इतना पोर्शन लार्ज मिड स्मॉल में डाल सकते हैं, वहाँ पे भी जो पोर्शन एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वहाँ पे सब एक्टिव फंड मैनेजर्स डिफरेंट अप्रोचेस रखते हैं. तो सिर्फ नंबर देखकर तो कभी डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कितने नंबर पे हम स्विच कर लें, क्योंकि सबके लोड सबके एक्सपेंसेस अलग अलग रहेंगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेस, क्योंकि डिपेंड करता है आपने कब इन्वेस्ट करा है. किसी ने एक ही साल में करा है तो उनका शॉर्ट टर्म गेन लग जाएगा, शॉर्ट टर्म टैक्स लग जाएगा, तो वो जो जितना डिफरेंशियल के लिए वो उधर जा रहे हैं उन्हें यहाँ पर देना पड़ रहा है. जिसने थोड़े लंबे समय के लिए किया हुआ है, तो ये सारे डिसीजंस काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं एक आम निवेशक के लिए. इसलिए बेटर ये रहता है कि आप एक टाइम दीजिए उस फंड को. बाकी अगर आपको बहुत घबराहट हो रही है उस फंड से, तो फिर तो आपको ये देखना चाहिए कि आप सही एसेट क्लास में है भी या नहीं.
1: जी, और

0: चलते हैं अगले कॉलर के पास। नोएडा से रविंदर हमारे साथ है। रविंदर, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
1: या गुड इवनिंग मैडम, आई हैव वन क्वेश्चन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, हाउ टू ट्रेड इन द ज़ीरोडा और ग्रो प्लेटफॉर्म, वेदर इट इज ट्रेडेबल और एनी अदर वे टू ट्रेड। थैंक यू।
2: Right. So as far as my knowledge goes on the electronic gold receipts, they are very much available on the NSC platform, as in they were introduced by NSC and they allow investors to buy and hold and sell physical gold digitally through a DMAT account. When compared to ETFs, I still feel that ETFs would be a better option since they let you stay away from physical gold, which also gets its, certain traits like storage costs and the anxiety that your physical gold is somewhere else and not near you. Is everything gets protected when you invest in a gold ETF, where the money is really not in terms of that physical gold, because in your hand it's just the units, while it's otherwise when it goes to EGRs. So EGRs may suit those who are wanting direct gold ownership, and while ETFs are ideal for investors seeking more liquid passive price exposure. But all said and done, if you want to trade in EGRs, then you can do so directly on NSE platform.
0: अपने सोने की बात की तो चलिए हम श्रोताओं को बता दें कि इस हफ्ते सोने का हाल क्या रहा। कमज़ोर अमेरिकी डॉलर और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में तत्काल वृद्धि की आशंकाओं में कमी के चलते सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह बढ़त जारी रही। अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा लंबी अवधि के बॉन्ड बायबैक को दोगुना करने के फैसले से लंबी अवधि के बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है, जिससे कीमती धातुओं की मांग में और वृद्धि हुई। एमसीएक्स पर अक्टूबर अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में सप्ताह के दौरान 5.1% की वृद्धि हुई और ये 162,438 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सितंबर अनुबंध के लिए चांदी के वायदा भाव में 4.5% की वृद्धि हुई और ये 2,46,597 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। कॉमेक्स में अक्टूबर अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में सप्ताह के दौरान 5.5% की वृद्धि हुई और ये $4,645.10 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ। सितंबर अनुबंध के लिए चांदी के वायदा भाव में सप्ताह भर में 6.8% की वृद्धि हुई और ये $69.53 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ।
3: ऑल राइट, नाउ लेट्स कनेक्ट विद रवि नारायण फ्रॉम बिलाई। जी सवाल पूछे।
4: नमस्ते मार्केट मंत्रा
3: जी। नमस्कार
4: मैडम, से मेरा सवाल है कि मैं एक SIP में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मेरे पोर्टफोलियो में जो है एक ही अच्छे भारत के लीड बैंक के पोर्टफोलियोज हैं सारे, और इक्विटी है और फोकस इक्विटी और मल्टी कैप वगैरह है, और करीब करीब 100% का इजाफा है, मैंने मेरे इन्वेस्टमेंट का 100% का इजाफा है, तो क्या मुझे मुझे अभी फंड की कोई जरूरत नहीं है, तो शुड आई कीप ऑन कंटिन्यू और मुझे इसका कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मुझे फंड की कोई आवश्यकता नहीं है, कैन आई रिमेन इन दी फंड्स, ये मेरा क्वेश्चन है।
2: Right. So, sir, if even if you're sitting at 100% gain and the situation of your life is that you don't need that money right away, then you might as well continue your investments in the selected funds, because selling them and booking profits would only mean that, that money will eventually land in your bank account, and then the risk of consumption, like I was discussing earlier, kicks in. So it's a happy situation, and I believe since you're a long-term investor, you can continue investing in those funds.
0: एक बात इन्होंने और कही थी कि ये एक ही fund house के funds हैं।
2: अच्छा, so ये मेरे से miss हो गया होगा। यहाँ पे जरूर मैं आपको बोलना चाहूँगी, when it comes to diversification, the diversification as a product mutual fund offers you, but at an investor level, diversification kicks in when you are spreading your money across different funds, like you said, focused, multi-cap. It also is important that you are investing in more than one AMC, because generally AMCs tend to follow a holistic or a one-stop investment philosophy at a fund house level, and then according to SEBI mandates, run the portfolio constructions as per SEBI mandates. If the market is not favoring that particular philosophy at one point in time, then definitely you can be in a situation where the AMC

0: level risk kicks in. So definitely you should look to spread beyond that particular AMC.
1: All right, moving on to the next big story of the day. Tensions between Washington and Tehran escalated further after U.S. President Donald Trump again shared an image that depicts the strategically vital Strait of Hormuz as new U.S. territory. The latest post follows Trump's earlier sharing of the identical graphic on 18th of this month after he previously floated the prospect of claiming jurisdiction over the waterway. Iran had reiterated that the crucial maritime corridor will remain closed unless the United States alters its stance. Rejecting Washington's territorial assertions, Iran's Supreme National Security Council Secretary Mohsen Rezaei launched a sharp critic against the U.S. President's statements. He said the gap between America's inability to reopen the Strait of Hormuz and its claim to own it is greater than the 7,000-mile distance between Washington and the Strait itself. The rhetoric comes as the United States prepares to roll out a additional economic measures targeting Tehran.
2: जी और ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रज़ाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमेरिका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि इस तरह की भागीदारी से ईरान उन्हें दुश्मन मान लेगा. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग को दिए गए एक साक्षात्कार में रज़ाई ने कहा कि ईरान तनाव बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पड़ोसी देश अमेरिका के आर्थिक दबाव का समर्थन करते हैं तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा. उन्होंने ये भी कहा कि अगर क्षेत्रीय देश अमेरिका के अभियान में शामिल होते हैं तो ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल निर्यात रोक सकता है.
1: And let's ask Jitinder ji from Jaipur what his question is.
3: हाँ, समय कम है तो शॉर्ट भी पूछ लेता हूँ. जैसे मल्टी कैप फंड है, दो फंड हाउस के बीच में कंपेयर करना रहा तो उसको स्टडी करने के लिए क्या क्या पैरामीटर रखते थे?
0: जितेंद्र जी, किसी भी कभी भी जब आप एक कैटेगरी में दो फंड्स का चुनाव कर रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज़ देखनी चाहिए कि वो फंड अपने बेंचमार्क्स को कितने अच्छे से बीट कर पा रहा है हर मार्केट साइकिल में, जो कि रोलिंग रिटर्न से हम पता कर सकते हैं, जो आजकल हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहता है. ये आपको बताता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव में उस फंड ने कैसा प्रदर्शन करा है. बाकी मल्टी कैप में इंपॉर्टेंट रहता है कि आप देखें कि वो जो बचा हुआ 25% रहता है जहाँ पे एक फंड मैनेजर अपनी अपना डिसीजन ले सकता है, तो वो क्या डिसीजन लेता आया है और आप कितना उस डिसीजन से ओके हैं. अगर आप लार्ज कैप टिल्टेड पोर्टफोलियो चाहते हैं तो आप ऐसे फंड मैनेजर को देखिए. जनरली ये डायनामिक रहते हैं, बट एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आप देखें अगर, तो आपको ये चुनाव करने में मदद कर सकता है. दूसरा एक रहेगा कि आप ये देखें कि वो एक्सपेंस रेशियो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो. ये कुछ चीज़ों को देखकर आप चुनाव कर सकते हैं.
1: All right, now let's take a peep into how the markets are expected to show up next week after a stronger than expected earnings season. Domestic investors are heading into a week packed with key market triggers including macroeconomic data, global events, US bond yield trends, foreign institutional investor flows, commodity prices and currency movements. Market participants will closely monitor the industrial production data and the latest forex reserve figures. Meanwhile, the primary market is set for another busy week with 5 new main board IPOs opening for subscription and 7 main board IPOs scheduled to make their stock market debut.
2: और आज वक्त इतना ही है. कुछ श्रोताओं से हम क्षमा चाहेंगे जिनके कॉल्स हम आज शामिल नहीं कर पाए. स्नेहा, कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: जी, धन्यवाद.
1: Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Foreign portfolio investors infuse over 23,000 crore rupees into Indian equities in August so far. In bullion market, gold and silver prices rise for third straight week and situation in West Asia remains tense. And with that, we end today's Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में संपन्न हुई। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठक 2026 के अंतर्गत सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने खेल विकास, युवा भागीदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय योग को प्रोत्साहन देने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने व्यावहारिक और सतत सहयोग के साथ ब्रिक्स खेल भागीदारी का निर्माण करने का आह्वान किया। उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धा और खेल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी साझा करने का प्रस्ताव किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
2: हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरईसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वह महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्टस एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने स्पष्ट किया है कि वायरस H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौजूदा समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। ICMR के अनुसार H1N1 समेत मौसम में इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में संपन्न हुई। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें ब्रिक्स देशों के बीच संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से खेलों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठक के अंतर्गत सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने खेल विकास, युवा भागीदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के तौर पर विचार विमर्श किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने व्यवहारिक और सतत सहयोग से ब्रिक्स खेल भागीदारी करने का आह्वान किया। उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धा और खेल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी साझा करने का प्रस्ताव किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। श्री सिंह ने कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में कहा कि इस समय आत्मनिर्भरता आवश्यक है।
2: हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौजूदा समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। ICMR के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न आदि शामिल है। ईस्ट बंगाल FC ने 135वां डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के युवा भारती क्रीड़ांगन में खेले गए फाइनल मुकाबले में मोहन बागान सुपर जायंट को 4-1 से हरा दिया। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत के लिए ये मैच जीतना जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged them to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector. During the interaction, Chief Executive Officer of India's first space tech unicorn, Skyroot Aerospace, Pavan Kumar Chandana, thanked Mr. Modi.

0: में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस के इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
4: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे

0: बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
1: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, AI, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव में श्री सोनोवाल ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचना पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देश भर के कलाकार श्रद्धापूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए।
2: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है, कला संस्कृति की द्वारा, नित्य गीत की द्वारा, इसकी वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।
3: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।
0: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को AI और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में

0: आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एमएल जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
1: ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरेंट कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges private space sector to build global aura of innovation as India celebrates National Space Day. Defence Minister Rajnath Singh stresses self-reliance in shipbuilding and maritime sectors. ICMR clarifies no new strain of swine flu identified in the country, assures current vaccines remain effective. BRICS Sports Ministers meeting concludes in Visakhapatnam with adoption of joint declaration to strengthen cooperation, inclusiveness and mutual respect in sports. In football, East Bengal lift Durand Cup for the record 17th time, defeating arch rivals Mohan Bagan in Kolkata. And in the FIH Hockey World Cup, India to face Australia in Netherlands tonight in a must-win Pool E fixture for a semi-final berth. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector and space research to build a global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India. Mr. Modi stated this during interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है।

0: ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India. Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day today, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
3: आपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है।
2: Defense Minister Rajnath Singh has stressed the need for self-reliance in building warships, offshore vessels and related maritime sectors, describing it as vital to the country's security. Mr. Singh was addressing the gathering after laying the foundation stone for 5 expansion projects of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers, GRSE, and Yantra India Limited, worth approximately 34,000 crore rupees in Kolkata. The defense minister asserted that India is capable of becoming a global shipbuilding hub and called for high-quality maintenance services and timely delivery of defense products to achieve this goal. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. The BRICS Sports Ministers meeting concluded at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh with unanimous adoption of the sports

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। सिक्किम के नाथुला दर्रे के रास्ते से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा कल संपन्न हो गई। इसके माध्यम से 464 तीर्थयात्रियों ने 10 जत्थों में यात्रा की। यह यात्रा 20 जून को आरंभ हुई थी और अंतिम जत्थे के गंगटोक आने के साथ ही संपन्न हो गई। तीर्थयात्रियों ने चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा की। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल की महिला टीम ने कल कोटा के नाबालू में एएफसी महिला चैंपियंस लीग 2026-27 के ग्रुप ए के आखिरी शुरुआती दौर के मैच में मलेशिया के सबाह फुटबॉल क्लब को 2-0 से हरा दिया। इस शानदार जीत के साथ ईस्ट बंगाल ने लगातार दूसरे साल टूर्नामेंट के मुख्य ग्रुप चरण में प्रवेश कर लिया है। अब ईस्ट बंगाल की पुरुष और महिला दोनों टीमें एक ही सीजन में एएफसी ग्रुप स्टेज में हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
1: आपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है।
3: Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day yesterday, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. Defence Minister Rajnath Singh has stressed the need for self-reliance in building warships, offshore vessels and related maritime sectors, describing it as vital to the country's security. Mr. Singh was addressing the gathering after laying the foundation stone for 5 expansion projects of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers, GRSE, and Yantra India Limited, worth approximately 34,000 crore rupees in Kolkata. The Defence Minister asserted that India is capable of becoming a global shipbuilding hub and called for high-quality maintenance services and timely delivery of defence products to achieve this goal. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache, and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. The National Skill Development Cooperation, the National Skill Development Corporation, NSDC, and Cultus Education have announced the launch of a nationwide cloud and artificial intelligence skilling initiative in collaboration with Amazon Web Services, AWS. The program aims to provide foundational AI and cloud literacy to 150,000 learners through AWS digital training content and to offer intensive job-ready training to 10,000 participants through the AWS Restart program, focusing on youth in Tier 2 and Tier 3 cities. The BRICS sports ministers meeting concluded at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh with unanimous adoption of the sports joint declaration. The declaration affirms the commitment of the member countries to strengthen cooperation in sports through dialogue, mutual respect and inclusiveness. The meeting was held under India's BRICS chairship 2026. In Madhya Pradesh, 9 people trapped in the strong current of the Gadheri River in Sagar district were safely rescued by a joint team of police.